अभी आप सुन रहे थे छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे। एक रोज मैं तड़प कर, बेमिसाल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

From the movie बेमिसाल से आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में एक रोज में तड़प कर। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, निकाह है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं

निकाह है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर जी के साथ में सलमा आगा जी आपको सुनाने वाले थे। तुम्हारा प्यार चाहिए

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।

मुकेश और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। फ्रॉम द मूवी तुम्हारी कसम से हमने पेश किए हैं। अदालत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ तुमसे दूर रह के।

यहाँ पे सुन रहे थे हो तुमसे दूर रह के फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं सुन साइबा सुन।

आप सुन रहे थे जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं, ताजमहल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे।

अभी आप सुन रहे थे अभिना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ताजमहल।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ताजमहल से आप सुन रहे थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो, जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो जो अच्छे वक्त में आपकी खुशी में शामिल रहे और बुरे वक्त में आपका साथ दे। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज फ्रॉम द मूवी अमन से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

0: to enjoy ever.
1: अभी आप सुन रहे थे सुराहेदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नास। फ्रॉम द मूवी अमन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। पुजारिन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

नमाई थी मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पुजारिन से हमने पेश किए है मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा सागर से गहरा प्यार मेरा गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रस्तों की तरह फ्रॉम द मूवी अपने हुए पर आए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैंने बुलाया और तुम आए लता जी आपको सुनाने वाले हैं

हुए पराये हैं फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं और म्यूजिक दिए हैं शंकर जय किशन जी। दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है। फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हमने पेश किए हैं। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। एक गलत बात और एक अधूरी बात, एक गलत बात और एक अधूरी बात न जाने कितने ही रिश्ते तोड़ देती हैं। जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी सुबह। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से आप सुनेंगे और म्यूजिक दिए है सलील चौधरी ने।

माया से हमने पेश किए है जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी जुबा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले एक बात बोलूं, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातें पहचान सके, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातों पहचान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।

अभी आप सुन रहे थे हम जिप्सी मिट्टी आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए है, आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में एक चीज तो कभी डिलीट नहीं होती, जिंदगी में एक चीज तो कभी डिलीट नहीं होती और वो है किसी की यादें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आज और कल।

अभी आप सुन रहे थे ये वादियाँ ये फिजाए बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी और वो आपको सुनाने वाले हैं रंग और नूर की बारात, किसे पेश करूँ।

मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे रंग और नूर की बारात, किसे पेश करूं। नादान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जीवन भर ढूंढा जिसको।

फिल्म का नाम है नादान और इसी फिल्म से हमने पेश किए है जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। द माइती मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हम पेश करते हैं उलझन सुलझना।

अभी आप सुन रहे थे उलझन सुलझे ना, रास्ता मुझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हमने पेश किए है आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है, सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है देर तक। पगला कहीं का है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे।

पगला कहीं का है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग भी तुम गुनगुनाओगे। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, काश के मेरा कोई सहारा होता।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे काश के मेरा कोई सहारा होता, आज मैं काहे को आवारा होता। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लता जी और मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए।

अभी आप सुन रहे थे तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी के वास्ते कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। मेरी सनम है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। और ये खास गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते।

आशा भोसले की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी और ये गीत हमने पेश किए थे शर्ली जी के वास्ते। रिश्ते जरूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देती, रिश्ते जरूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देती और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुमन कल्याणपुर के साथ तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे और ये गीत हम पेश करते हैं धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी जी भी आपको सुनाने वाले थे। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है, और ये गीत हमने पेश किए हैं ख़ास करके धीरज की तरफ से, आर टी जी के वास्ते, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है, खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। बाहोशो हवाश में दीवाना, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे बाहोशो हवाश में दीवाना। इस हिस्से में एक आखिरी गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, मोहम्मद रफ़ी जी सुमन कल्याणपुर जी मिलकर सुनाते हैं, कह दो जहाँ से कह दो इश्क पर जोर नहीं।

0: दोस्तों, जीवन के माधुर्य के रस लेने के लिए हमें बीती बातों को भुला देने की शक्ति अवश्य धारण करनी चाहिए और व्यर्थ कर्म भारीपन वे थकान लाते हैं और जबकि श्रेष्ठ कर्म हमें प्रसन्न वे हल्का बनाकर ताजगी प्रदान करते हैं। मित्रों, इस बात को आप मत भूलें।
1: मनुष्य शरीर मिल गया पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो ये बड़ी शोक और दुख की बात है। भक्तों, रावण के अपने विचार।

सज्जनों, जो प्रसन्न रहते हैं उनके मन में कभी आलस्य नहीं आता। आलस्य एक बहुत बड़ा विकार है और संतुष्टता, वे खुशी साथ साथ रहते हैं। इन गुणों से दूसरे आपकी ओर स्वतः यानी अपने आप आकर्षित होंगे। तो इन बातों पे आप ध्यान करें और कोशिश करें इस तरह जीने के लिए मित्रों।

मित्रों, यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न गंवाएं। और दोस्तों, मुस्कान चेहरे का सच्चा सौंदर्य है, चिरचिरा स्वभाव का व्यक्ति वास्तव में कुरूप है। तो चिरचिरा मत रहिए, ना रहिए चिड़चिड़ा, गुस्सा में ना रहिए।

प्रेमी दोस्तों, जीवन एक नाटक है। यदि हम इसके असलियत को समझ लें तो सदैव प्रसन्न रह सकते हैं हम, और सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है।

भाई बहनों, कभी कभी आपकी एक मुस्कान मरुस्थल में जल की बूंद जैसी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और यदि मैं एक क्षण खुश रहता हूं तो इससे मेरे अगले क्षण में भी खुश होने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, इसको आप मत भूलें।

प्रिय लोगों, मैं प्यार के धर्म को मानता हूँ। प्यार मेरा धर्म और विश्वास है। मेरी माँ प्यार है, मेरे पिता प्यार है, मेरा पैगंबर प्यार है, मेरा भगवान प्यार है। मैं प्यार की संतान हूँ। मैं केवल बोलने आया हूँ प्यार का। सज्जनों, क्या आप भी प्यार के लिए और इसे सकारात्मकता में फैलाने आए हैं या कुछ और करने आए हैं आप? इस पर जरूर विचार करें।

भाई बहनों, आपके सामने का जीवन आपके पीछे के जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्षमा करें, लेकिन ये वास्तविकता है। सही बात है, अन्यथा आप और अधिक दुख भोगेंगे। मित्रों, दुख भोगेंगे अगर बार बार पिछले बातों को सोचते रहेंगे तो, चाहे ये कितना भी बुरा और दर्दनाक क्यों ना हो। जितने जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। बीती बातों को भूलना, भूलने की कोशिश करो, वो सब भूत है। भूत मतलब फरलेदन तय, बीत गए उबतिया, अब काहे के बैठ के सोचत बाटे।

की बातें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें वो सिखाती थी तुम्हें। बेटा आओ, आओ, आओ, सब मिलके वो गाना गाए जो तुम हमेशा अपनी माँ के साथ गाते थे। गाओगे ना? आओ, आओ गाए।

0: बाबा उसले मलाई हजुरले जस्तै सधैं खुशी राख्छ धेरै माया गर्छ
1: फर्स्ट एवर नेपाली डुएट्स आपने सुने आपके लिए हमने चला दी और वो भी पवनदीप राजन और अरुणिता कांजलाल की आवाज में

लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, और प्यार की ज़रूरत, हाँ जी प्यार की ज़रूरत दिल में होती है।

धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता सुंदर अति सुंदर आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू।

बेताब दिल है धड़कनों की कसम हवा की में कि बेताब दिल है, और ये मौसम भी कहते हैं कि बेताब दिल है आप कहाँ हो धड़कनों की कसम। फिर मिलेंगे, फिल्म का नाम है श्रिया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में आपने सुने। Friendship is heel bijzonder en speciaal. Friendship is heel bijzonder en speciaal. Kopen kun je het echter niet. Friendship kun je echter niet kopen. Maar de juiste personen zullen er zijn. In tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Ja, dat is wel zeer zeker. खुद बताती है, कहते हैं कि मोहब्बत खुद बताती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसको आंखों में रखना है और किसे दिल में बसाना है।

सनम वाकई में आपके सिवा और कोई नहीं है, एक तू ही है सनम। रास दिल का दिल में छुपाते हैं वो, हाँ सुनो वालो, रास दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नजर झुकाते हैं वो। आप जानते हो ना, अगर आपसे पहला इश्क होगा किसी से तो आप ऐसे ही हो, शर्मीली से शर्माते हुए आप सामने जो कोई आ जाते हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाते, बस सिर्फ अपनी नजरें झुका लेते हैं। नजरिया झुकाने से बस जो कहना है वो अकस्मादे ही समझ जाते हैं समझने वाला। Maak je vandaag niet te veel zorgen. Doe het rustig aan en geniet van de kleine dingen die je ziet. Ja, geniet van de kleine dingen die je ziet. Wees gelukkig en blij. Want het leven rast anders zo aan je voorbij. Maak er een fijne dag van.

सदा मुस्कुराते रहो, तुम सदा मुस्कुराते रहो, आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, खुशहाल में रहो। जहाँ पे जैसे भी आप सुनते हैं, जिस देश में आप सुनते हो, आपको भी बहुत से खुशियाँ खुश नसीबियाँ पेश किया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए से। तुम सदा मुस्कुराते रहो, तुम सदा मुस्कुराते रहो, ये तुम्हारा ही है। तुम सदा मुस्कुराते रहो, ये तमन्ना है हमारी, ये तमन्ना है हमारी, हर दुआ हर प्रार्थना में, हर दुआ प्रार्थना में मांगी है बस खुशियां तुम्हारी। बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसा रिश्ता, बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते, जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो।

0: तेरा चांद मुझसे दूर है, जाने क्यों इतनी मजबूर है। आप जहां से जैसे भी सुनते हैं, सुनने वालों आपके बहुत सारे प्यार पेश किया जाता है। अभी का फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ऐसे कई अन्य देश है जहां पे अभी सुबह होने को जा रही है, तो ये बेस्ट रोमांटिक मूड में आप हो तो आपके भी बहुत सारे लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट पेश है। रिश्ता का कोई जाति धर्म नहीं होता, ना ना, रिश्ता का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जहाँ मोहब्बत है, जहाँ जिससे मोहब्बत हो जाता है, बस रिश्ता वहीं से शुरू हो जाता है। कि सच्चा प्यार करने वाले सच्चे प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, सच्चे प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन फिक्र बहुत करते हैं।
1: तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

आवाज और संगीत हिमेश रेशमिया और सुनाए आपको सवाई भात मौजूद है। बारिश के बूंदे में कभी भीग लिया करो, बारिश के बूंदे में कभी भीग लिया करो, काम को छोड़कर मस्ती में जी लिया करो। हाँ जी, काम को थोड़ा से छोड़कर मस्ती में जी लिया करो। कपड़े गीले होते हैं, कपड़े गीले होते हैं तो बस होने दो, ऐसे मौसम में एक दूजे को प्यार किया करो।

चले आए। इस मौसम की मोहब्बत कुछ इस कदर है, इस मौसम की मोहब्बत कुछ इस कदर है कि वो उधर धड़कता है और इधर ये सुनने वाले तड़पते हैं।

जैसे जरूरी है दिन के बाद रात होना, जैसे जरूरी है दिन के बाद रात होना, वैसे ही मेरे लिए, वैसे ही मेरे लिए खुशी का मतलब है बस आपका साथ होना।

जो संग है, कहते कि दो पल की जिंदगी है, दो पल की जिंदगी है, इसे जीने के लिए, इसे जीने के लिए दो वसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह।

0: अक्षय मुझसे
1: आवारा हूँ आवारा हूँ, आपके लिए पेश किया गया है उस बेगिस्तान से, और ये गाया गया है हवस गुरु ही से। ये दिवस आपको, आप सभी को

0: स्पेशल स्पेशल आपके लिए पेश किया जाता है, यो चुन चुन कर और आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपसे बता दे, ऐसे कौन सी फ्रूट, कौन सी ऐसे फल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। हम आपसे बता दे, बनान, बनान ओम स्वक्त फरमेदन फरवेदरन, बनान केला, केला यानी कि बनान खाने से आपके जो स्वक है थे वो फरवेदर हो जाए। बनान ओम स्वक्त फरवेद पपाया, पपाया तर फरबेदरिंग फॉन इट स्पेस फरतेरिंग स्टेल्सल, पपाया तर फरबेदरिंग फॉन इट स्पेस फरतेरिंग स्टेल्सल। मांगो, मांगो जिसे हम कहते हैं आम, मांगो ओम द इम्यूनिटेट फरस्टर्कन
1: गेअवांसीर्डे हुआवेन।
0: अनानास, अनानास, हाँ अनानास जिसे हम भी कहते हैं अजनास। अनानास तेखन केल प्रॉब्लेमन। खरानात आपल, खरानात आपल यानी कि अनार, अनार गेफत लिखाम क्रख्त। ड्रुइवन, ड्रुइवन ओम लेवर प्रॉब्लेमन ते कालमेरन। वर्तलन फॉर हेट गेसिख्त वर्मोगन। टोमाट यानी कि टोमाटी जिसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ, टोमाट रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल। सिनासापल, परसीना जिसे हम कहते हैं सिनासापल बै अन विटामिन सी तकोर। सिट्रून, सिट्रून, सिट्रून फॉर गेविक्ट फरलिस एंड ओनगिफ्टिंग। वाटरमेलन, वाटरमेलन जिसे हम भी कहते हैं वतरामून, वतरामून यानी कि वाटरमेलन ओम हेड लेखाम।

salades voor meer energie. Guyave. Guyave जिसे हम कहते हैं अमरूद. जी हाँ, अमरूद रेखत डायबिटीज. कीवी फॉर

रेडियो पे आप सुने हैं तो ऐसा ही करना चाहिए। नहीं नहीं, अपना दिमाग जो है ना, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उस

बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं, सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती मेरे प्यारे। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो

ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर चला जाता है। दौलत ये भी करा देते हैं, वैसे दौलत नहीं कराते क्योंकि दौलत में मुख नहीं है कुछ बोलने या कराने के लिए। ये सब इंसान पर निर्भर है। दौलत बोलता नहीं पर बुलवा देता है, दौलत करता नहीं पर करा देता है। तो इस पर आप जरूर से अपना ये निर्मल बुद्धि जो हमको मिला है इस पे गंदगी मत जमने देना, इसे निर्मल बनाई रखना, अच्छे से सोच विचार कर कदम बढ़ाते रहना, सेवा करते रहना, एक

आपने ठीक सुना, कभी अपने बाप के सामने बड़ा मत बनना। कभी अपने बाप के सामने बड़ा मत बनना। जिसने आपको जीना सिखाया है उस बाप का हमेशा सम्मान करना।

आवारा हूँ ये लाइव स्टेज प्रोग्राम आपके लिए जो YouTube पे है आपके लिए पेश किया जाता है। आपका एक एख्त फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से

सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो डिस्को नशा। ये मेडली आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है और ये भी हवस गुरु ही के आवाज में लाइव

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। आप सभी के लिए पार्टी तो यहाँ से आरंभ हो गया है और आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ,
2: I love you यार।
3: Love you too।

हाई हील थे नच्चे, हाँ हाँ हाई हील पे भी नाच सकते हैं, क्यों नहीं। हाई हील माने की हो का हक पे। इस बार है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड।

0: दिल्ली वाले गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के ये जवानी दीवानी, ये जवानी है दीवानी, जरूर तो कुछ बात होगी ना उसमें।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ।

करे आपके लिए इस टाइम टू एंजॉय एंड टाइम टू बी हैप्पी हैप्पी नॉट ऑलवेज टुडे बट एवरी डे बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी. U luistert naar Faun Hindustani Radio, mijn lieve luisteraars, en dit wordt allemaal een keertje heel anders voor u gepresenteerd, helemaal voor u.

यस यस यस यस एस अयो ओ मेरी मैना तू मानल मेरा कहना उषा मंजेशकर और मन्ना दे और फिल्म का नाम है प्यार किए जाए और प्यार करते करते हर पल बीते और ये गीत आपके लिए शकीरा की आवाज में

आई ना आला माजरा उस्ताद लक्ष्मण भगेलू जी ने सुना दी कि आला माजरा दोरो प्राणी कसाबा कोरो यहाँ पे आपके लिए पेश किया गया है। आपका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पेश किया जाता है मोक्सी पातू। हाँ मोक्सी पातू आप जानते हैं ना, और मोक्स आले इसी सब चीज मैंग कर दे तो उसमें कितना स्वादिष्ट हो जाता है, इसलिए आज कुछ अलहिदा आपके लिए

0: वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाहुन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आप सभी को एक मंगलमय दिवस यहाँ से पेश किया जाता है और आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ। आप सभी को एक शुभ प्रभात। तो चले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। दनाक से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से हम श्रवण करेंगे हनुमान चालीसा।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, हर नौ रघुबर विमल जसु जो दायक बल जा।

0: हनुमान चालीसा जो बच्चों से गाए हुए ये सुंदर सा हनुमान चालीसा आपके लिए पेश किया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको लेकर चलते हैं ये बताने के लिए कि सुंदर सा हनुमान चालीसा पेश किया गया है दनहाख से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से। सभी को शुभ दिवस कह रहे हैं। सुरीनाम अली फॉर्नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राजीव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर। इस खूबसूरत दिवस में ठंडी ठंडी मौसम जो शुरुआत हो गया है भजन माला कीर्तन प्रोग्राम में पेश है।
1: शंभु की प्यारी गिरिराज की दुलारी गिरिजंग

0: शंकरानी माता भजन यहाँ से हमने मिलकर श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, पेश किया गया है श्री नामली फॉर नो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से, श्री सुभाष श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी के लिए पेश कर रही है। यूं नहीं झुकती दुनिया तेरे दर पर, यूं नहीं झुकती दुनिया तेरे दर पर, तकदीरें बनती है मैया, तकदीरें बनती है मैया तेरे दर पे। देन हाँ से श्रीमती लेन बाबू राम जी की तरफ से पेश है।
1: माँ अगर संतान का भविष्य लिख सकती तो दुनिया के सारे सुख उसके हिस्से में लिख देती। तो आइए आज अपने भाग्य की लेखनी माँ के हाथों में सौंप देते। बोलो सच्चे दरबार की।

अवश्य सारे बोलो जय माता दी। पेश किया गया है प्यारे सुनने वालों सुरिनाम ली फॉर नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक्स से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से। ये सुंदर भजन जय माता दी पेश किया गया है देन हाँ से श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ से।

Den Haag, Makaistraat nummer 6C, Fahon Hindu Basisschool, Vereniging Algemeen Hindu Onderwijs getrafse, Yusamne Milkaror Sravan Kihe. कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है, जो तेरे दर तक पहुंच जाता है, जो तेरे दर तक पहुंच जाए वो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। दना के इकनुतोस्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में श्रद्धा भक्ति के साथ

0: Daarna ga ik nu de straat nummer 6, Sansta Hindi Prachar. Sansta Hindi Prachar, Jo Chan Parivar, Parivar Chan Gurbin ke nirdeshya mein, Shraddhal Bhakti ke saath Sundar se Maya ka bhajan, yahan se milkar sravan ki hai, maa ke darbar mein jab jata hoon, to bada sukoon paata hoon. Rotterdam Hoogvliet, Texasweg nummer 5, Sri Vishnu Mandir Sansta Jagrati, Sansta Hindi Seva Sangh, Sri Ganga Mata Mandir Sem, Aur Rotterdam West Blok Makerstraat 46, Sri Saraswati Bhavan Se, Sri Mandali Sabhapati, Sri Pandit Rajkumar Mahatam Ji Ke Taraf Se Saravan Karenge.
1: Aaj Tumhare Paas Maa Ke Liye Vakt Nahi Hai. कल वक्त बहुत होगा, माँ नहीं होगी. जिस दिन उसका नंबर फोन बुक से डिलीट करोगे, दिल फट जाएगा. जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था. इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था.

0: कल हमें लंदन निकलना है।
1: हाँ चलेंगे ना।
2: माँ का मन अति पावन है, माँ शक्ति का वास हो, संकटों का नाश हो, हर घर में सुख शांति का वास हो, यही शुभकामनाएं पेश किया जाता है हम सभी के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। सुंदर महाभजन पेश किया गया है रोटरडाम हुक फ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर, संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात सेशन फेयर तक से, श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से हम श्रवण कही। और श्री पंडित राजकुमार महातम जी हम सभी को एक शुभ प्रभात, एक शुभ दिवस कह रहा है।

कृष्ण मंडल के आवास में ये बच्चा सुंदर सा माँ भजन हम सभी को यहाँ पर आज इस खूबसूरत दिवस में सुना दी है ना, कितने सुंदर से गाए हुए हैं। जब होती है माता के कृपा, जब होती है माता के कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मन के सर भी झुक जाते हैं। देन हाँ, खलेसकफेन फोर पार्क से पाव एंड ओनरहाउस बुद्रैव के इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के तरफ से ये सुंदर सा भजन हमने मिलकर और श्रवण की है आज इस सुबह के कार्यक्रम में। आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर दनाखला इसके फैन फोर पार्क से। इस बार है सिंधा ख्रूथ हांडल इन ख्रूंते इन फ्रॉइड, इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल। श्रीमान परशुराम मोहनलाल के तरफ से ये सुंदर सा भजन।

राकेश काला जी के आवाज में माता भजन पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, पेश किया गया है देन हाग लेस्कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथहांडल, सुंदर ग्रोथहांडल इन ग्रोंते एंड फ्रूट, इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल, आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर देन हाग लेस्कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा ग्रोथहांडल।

अति सुंदर गणेश भजन हम मिलकर श्रवण की है आज के प्रोग्राम में पेश किया गया है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोथांदल पेफे के तरफ से श्रवण हमने मिलकर की है सुंदर सा माँ भजन।

माता की कृपा तो संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। और ये भी कहता है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा।

हाँ हाँ, मैया शेरा वाली है और मैया जोता वाली भी है। जो आप आज करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा, यही नियति का नियम है। हम बड़े नहीं हैं, हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो शक्ति है, हमारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो

और कहते हैं कि जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी माँ की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती।

चले धीरे धीरे हम कुछ नए गीत सुनने के लिए आपके लिए जो तैयार करके रखी हूँ। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं मेरे दोस्त, और आज कभी जाता नहीं है। तो आज जो है ये पल जो है, इसे एक नया मोड़, एक नया दिशा दे, इसे एक बेहतरीन यादगार बना लो मेरे दोस्त।

0: ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट
1: नैना के बाद सुनिए जी कि चोली के पीछे क्या है।
0: अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

मोहब्बत हो ना हो, मोहब्बत हो ना हो ये अलग बात है मेरे दोस्त, ये अलग बात है। मोहब्बत हो या ना हो ये अलग बात है, पर तेरी चाहत ने हमें अपने दिल से मिला दिया है। जिंदगी का हर लम्हा, जिंदगी का हर लम्हा सुहाना लगता है, बहुत प्यारा लगता है जब तेरा हाथ मेरे हाथों में लगता है।

गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा और एक बहुत प्यारा सा मुस्कान की तरफ साथ में एक एहसास भी नहीं कि तुझे एहसास भी नहीं मेरे दोस्त कि तू मेरे लिए क्या हो। आप बहुत खास हो, पहले आदत फिर जरूरत अब और अब जिंदगी बन गए हो। वो मेरे लिए इतनी खास है कि वो मेरे लिए इतनी खास है जैसे धड़कन के लिए

सुनिए अभी सुनिए मेरा मेरे दोस्तों भाई बहनों रेडियो फाउन के सुनने वालों कि तू मेरी बेबी मैं तेरा सोना, तू मेरी बेबी मैं तेरा सोना, धरती क्यों है पागल तुझको तो मेरे दिल में ही होना है। तू मेरे बेबी मैं तेरा सोना।

इस बात पे तो ये शायरी होना चाहिए कि तू आकर यूं ही रोज मुझे छू जाया कर, हर लम्हा में अपना होने का एहसास दिलाया कर तो ना। कभी आकर पास मेरे ठहर जाया कर, तो कभी तू मुझ में ही उतर जाया कर।

मेरे दोस्त, प्यारे प्यारे सुनने वालों, तू मेरे ज़िंदगी के वो खुशी है जो हर दिन रंग भर देती है।

तेरा दीदार, तेरा दीदार की हसरत, तेरे दीदार की हसरत, तुझे पाने की ख्वाहिश है। हर एक लम्हा तेरे दिल में उतर जाने की ख्वाहिश है। तेरे सीने पे रख कर, तेरे सीने पर रख कर सर को जुल्फों को खेलने में, मेरी इस जिंदगी को अब संवार जाने की ख्वाहिश है। कितनी ख्वाहिशें रहते ने हम सभी को, डीप इन मैन हार्ट फलांग एक एरनार यो तहबन इक्वल एल्क मोमेंट इन योर हार्ट सेन। एक लेग मैन होफ ऑप य schoot en speel met je haar. Ik wil van mijn leven iets moois maken samen met je.

लत लग गई, लत लग गई, यानी कि एक खवंत हो गया है, लत लग गई। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो उतर जाएगी, किसी की आंखों से पियो, किसी की आंखें से पियो, खुदा की कसम उम्र सारे नशे में गुजर जाएगी। तन्हाई में मुस्कुराना इश्क है, तन्हाई में मुस्कुराना इश्क है, एक बात को कब से छुपाना वो भी इश्क है, यूं तो नींद नहीं आती है रात को, यूं तो नींद नहीं आती है रात को, यूं तो नींद से जाग जाना इश्क है।

ये घड़ी ये पल। ये घड़ी ये पल आपको बहुत खुशियाँ भरा रहे, बहुत खुशी भरे ये पल, ये घड़ी आपका हो।

2:30 voor je live. 2:30 je live broadcast kiya jata hai aapke liye.

आज थोड़ा साइलेंट गीत आपके लिए पेश कर रही हूँ शनिवार के सुबह के कार्यक्रम। 10 मिनट बाकी है 12 बजने में।

रवि बे और नीली बे के आवास में। ओ बेबी आई लव यू, आई नो यू लव मी टू।

एमली बुधराम, पैगी सुपर सात और नेरा हरि प्रसाद की आवाज में ये शमा बॉलीवुड

more music and a little bit talk. Kimberly Budram, Peggy Suprasad, Neera Hariprasad, Yishoma. खाते हैं हम कसम इंदर कन्हाई और विद्या खेई की आवाज़ में 2026 बॉलीवुड कवर गीत

खाते हैं हम कसम विद्या खे और इंदर कन्हाई के आवास में श्रवण कर ली है हमने।

स्टारग्राम और नीरा हरि प्रसाद के आवाज में सागर किनारे ये सुंदर कफर हुआ गीत आपके लिए पेश किया गया द एन एख्त फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दंकबार लिफ्ट फॉर हेट लेफन लिफ्ट फॉर हेट लेफन दंकबार फॉर द दाग हेट इज नीट फॉन सेल्फ स्प्रेकन हेट इज नीट फॉन सेल्फ स्प्रेकन दट ik die beleven mag. Dus kijk ik naar de lucht, soms verlicht, soms duisternis, maar met ergens een licht dat laat zien hoe mooi het leven is.

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों, तेरे नाम लिया और क्या किया, क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया, सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत के ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नेखंतीन्द्रियन तख्तकां। ये फिल्म है दोस्तों और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है किशोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

और राजेश खन्ना थीना मुनीम का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं, कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैन खैन अख्तिनवेर, वो लोग बोलते हैं एक बैन खैन अख्तिनवेर, एक्वा बोले है एक वर्थ अख्तीन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती होंद नई हनन जी फन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका याग्निक क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ फिर।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सस्ती काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज है और आज भी आप लोग को हम समाचार सुनाएंगे। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज भी हम लाइव है हमारे यारो। अगर हमारे प्रोग्राम को आप फेसबुक के माध्यम से और यानी कि देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो जाइए रॉय सूरज वाली भी नहीं जॉनी नंबर वन भी हमारा फेसबुक है हमारी जनता।

0: तो दोस्तों बहुत गर्मा गर्म खबर है सुरीनाम की और धर्मेंद्रा आएंगे भैया स्त्री तो धर्मेंद्र वेलकम ब्रदर आ गया है राज राम लगन भी आकर जुड़ गया हमारा प्रोग्राम में आप सबके हमारा प्यार भरी प्यार भरी प्यार भरी स्वागत है हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। आप लोग को पता है दोस्तों इस समय पे और यानी कि सोशल मीडिया पे सुरीनाम देश में गम्मच मचा हुआ है कारण कि वहां पर भैया यहां हॉलैंड में एक आदमी का नाम बा पॉक्स गजराज एक बिजनेसमैन है भैया साकमान है पैसा वाला आदमी है और ओके रेडियो स्टेशन इंटरव्यू करी से और राम राम भाई राज राम लगन तो ओके इंटरव्यू करी से तो इंटरव्यू पे पॉक्स गजराज का बोली से छोटा रूप में आप लोग को हम सुना दे है हमारे जनता
1: And that was 4 weeks later. You know, eventually, when both I and the project received approval that it could proceed in Suriname, people were willing to buy land. We weren't going to ask if we could, state land or whatever. The people just wanted to buy. They said, we'll buy it.
0: तो दोस्तों ये नीदरलैंड्स अफेयर से भी है इसमें और बताए गए हैं कि ये आदमी सुरीनाम गए थे और ये है पॉक्स गजराज और वहाँ पर मांगत रहा एक जबरदस्त ने यानी कि दिल बनावे देशवा खातिन 2000 घर मांगत रहा बनावे पॉक्स गजराज वहां पर दोस्तों रेडियो स्टेशन फर्स्ट पे ये जा करे और बताई है और क्या क्या बताई है बोले जब गैल है वहां पे तब बोले जब गैल है तब संतोखी के बोले बैलकरी से कि हम अंगेला 2000 घर बनावे सुरीनाम देश में। हाँ दोस्तों सुरीनाम देश में तो संतोखी बोले वही समैया पे बोले वही समैया बोले हम ले रही ली का बोले हैं अन अन अन देशवा ले रही ली हम तो ओके समय न रहा तो एन आंध्र अन मनीर पे बोले उपठा दे से का बोले हैगा ब्रिंसवाइक लगे जब ब्रिंसवाइक लगे गैल है तो बोले है कि हम कई मिलियार्ड के बोले हम मांगे लहिया इन्वेस्टर करे और वो बोले हैगा दो सौ हजार की कितना बोले मांगे है यहाँ पे बोले है घर बनवावे और वो बोले हैगा तुलन का मांगे तो ब्रिंसवाइक बोले बोली से कि 2% उपदरखवा के बोले हमारे रीकनिंग वहां पे तू पठा दे हवड़ा कर दे तो बोले तो के हम जितना है बोले हम तो के बोले हैगा सफर खनिंग रीखल कर दे मिया स्टॉक पांचवे प्रोसेस स्टॉक 200 2% ऑफ मे रीकनिंग द रीखल एक आल फॉर खनिंग ई अदमिया बोले है और बोले है न कौ द रीकनिंग बेन तो नहीं सीख अदमिया बोले हम थोड़ा बीमार बाटी कि हम जाबे ई चीज कर 3.5 मिलियन एरो के बातचीत है और ब्रिंसवाइक बोले 2% बोले हमारा रीकनिंग वहां पे तू धर दे तब बोले कुछ हो ही पाएगा तो ये रमिया बोले हैगा बोले एक फर्टेल यही सो मेर ओवर बॉक्स कैट की ब्रिंसवाइक बोले है ओके उका जुका सब बोले भैया बड़ी गाड़ी आ रही देई से रमिया बोले ऐसे बोले तो लो मांगे देश चलाए बोले श्री नामक बोले यूलिसन बनाना बोले बनाना रिपब्लिक है भैया बोले तुंद रेक्टर अनफांकलक दस्कुंद द क्यूरेटर के बारे में बताई से बोले जो एगो अने होटल एगो रहा लियोंस बैरक बोले जो हम किल्ली बाटी तो बोले 9 हेक्टार जमीन भी ऊपर रहा 9 हेक्टार जमीन में से बोले नोतार 3 हेक्टार बोले जगह बेच दे वारफान बोले हम ऊपर बसलाख कर ले रही बोले बसलाख चीज पे बोले सरनाम में बोले हमार 9 हेक्टार जगह जो हम किने रही होटलवा हमें स्टार्ट रहा लियोंस बैरक पे आप लोग के पता है बोले ओमा से तीन हेक्टर बोले नोतारस ले लीजिएगा, बोले हैगा बेच दे इसे, तो बोले के बेची से, तो बोले की ओके बेची से कहा बोले है अने कॉम्बी मार्क के, बोले उस समय पे तू जाने बड़का स्पॉन्सर के रहा बहुता के कॉम्बी मार्क रहा, तो बोले तू नालिश नकल, बोले अत्य से बनाना रिपब्लिक इन सूरीनाम, बोले हैगा सर नाम में बोले सब कुछ हुआ बिकाऊ है बहुत इस एनिट में नहीं मार हेड ब्लेव वे एन डी पी यहाँ लिखल है भैया geplunderd, wat valt er nog te verdienen in Suriname? Jeremia Boli zei, buddy, buddy, baat, bolle, we hebben nu een regering, een jaar. Hoe kijk je terug naar het echte jaar die wat we hebben? NDP is, ja, maar je kan het kijken naar haar. Toen je ze baat, balis, ik er baren mee, bhaiya. Aro, Ronnie Brunswijk, buddy, naraj hai. Aro, Brunswijk ka bolle hai, over Pox bolle, niet alle Hindustanen hebben die lelijke manieren. Vroeger zouden we het in de offerbach hebben gegooid. Bolle ab bolle uchi jua hamana karab. Ik er mare me Brunswijk ke juka uka. MMP ke gari deise. Bolle bandar under sab banai se bhaiya. To i discriminatie se worto na jahin gebruik kareke. Wij zijn multicultureel. Je mag niet dit soort dingen gaan zeggen. En op bepaalde bevolkings als mensen ons koelie ook noemen, vinden we ook niet leuk. Hoe kan je zeggen dat Juka AP dit en dat is? Dat mag meneer en Gajaraatje niet zeggen. Zo en zo mensen. Ja, wat we hegen. Bolle hegen. Uitspraken die Pox Gajaraat tijdens een interview bij de Standvaste Radio over hem deed. Hoewel Brunswijk de uitlating zeer ernstig noemt, roept hij zijn achterban op rustig te blijven en zich niet te laten meeslepen door een boosheid. Oor wat je hega volgens Brunswijk mogen de uitspraken van één persoon niet worden geteemd als het gedrag of de mening van de hele bevolking was op Hindustani terugkari zega. To ik er baren mee bahut lamba chowna bhaiya to Brunswijk bari naraj hai ki ee adamia boli ye go saakaman hai a saakaman gaila Suriname mein investeer kare a usse mangatra ik er upar se 2% le da seg meneer Gajaraj wat de waar hai dat weten we niet. Dat is het. Tot Chitra Autaar bhi aakar 7B se hamara program mein jut gaye hai. Bhaiya Dilip Buddhu bhi aa gaya hai. Aur yahan yahan par kitne log hai jo jud gaya hai hamara samachar. Aap log bas sunte raho hamare pyare pyare janta. Suriname ka samachar hai. देखो भैया क्यूबाने सूरीनाम में बहुत ढेर है भाई, बड़ी क्यूबाने हैं जो आदमी सूरीनाम में हैं। आपके तो पता होगा कि कितना ढेर क्यूबाने सूरीनाम देश में है। हम भी सूरीनाम देश में गरीब भैया ब्रोमफिस क्यूबान के न जाने फरके के लाइक हमारो तो मार के पेल भागल भाई। गैली सिपाही में नालिश कर ली, सिपाही बोले कहे दौराई के पकड़ ले, हम बोली ओके पकड़ अब छोड़ी फोड़ी भोग दे भैया हम हुए रह जावे बेतरे हम कुछ ना बोली। जो सो इस सूरीनाम में से अनफेलखे आज तक कुछ ना भले भैया अनगिफ्त कर लिए वो तो बस कादक हुई गए हमारे बोरख और सब लाश हुई गई भैया जो हीरो maar ik was helemaal, helemaal klaar mensen. En Cubanen heb je heel veel in Suriname. John Saban Huapare. En Bromfis Chalawe zonder enige ervaring. Maar kijk, hier baantje het horen. Ik ga echt paar keer bij jou, Cuban. Echt paar, met lep doe je parani. Baantje het hier horen. Chitra. Toen Dilip ab dekka, hele Cuban ke donderdag ke baantje het. Katalis se kaartis se oke kono. De Bainad Pandey Rice. श्री भी आ गया है तो आपको राजश्री भी हम प्यार देते हैं यहाँ से हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। तब देखो क्यूबान के काबले राजश्री क्यूबान के बुधवार के ना दोंदर दाख के भैया और बुधवार के रात के क्यूबान के समन कटली से काटी से ही बातचीत होएगा मोंगो स्त्रात में और खवापन द रोफर्स में कटली से काटी से भैया और कमोड़ी पे दुनिया ने कपाशों त्रय धल्ले रहा कटली से रहा भैया ब्राउन फिश ओकर चोरी करके लेके भग गए क्वाटा में। तो भैया है स्वाइड आल और दोस्तों असाइड सोशल मीडिया पे जइयो तीर खेरेंगे वहां के बड़ी आदमी गरियावे भैया आज सोशल मीडिया पे गर्मी त्रुक में रहा और घर आवे है और मैं सुरीनाम इस नी बेहतर खबर दिला तो उधर इरलक सैन आलस वोट दूर तो हमारा भैया फतिंगन रामराज भी आ गया है सुतमीर से। तो भैया फतिंगन आप तो बहुत बड़का फैन है फिर यहाँ पे के आपको तो मालूम होगा कि इस वक्त सुरीनाम देश में बोले है सिमोंस बोले है कि हम कुर्सुआ स्टेबल कर दे ली बाटी। मैं कुर्सुआ तो भैया फतिंगर

यानी सच्चाई कहना हमारा काम है। हाँ, twee verdachten voor vermoedelijke schiet in zusters project, ego bhaiya, Suriname में कहीं ego sister project है Paramaribo में। यहाँ बताए गए भैया वहां पर दुई आदमी दी ट्वेई ताल वोट इरफान फरदा मंस परसोन दिन दोपहर भैया पिस्तौल लेके दागी से दुई गो दागी से भैया जेकर पेट में लगल है और जेकर पेट में लगल तो अब तू जाने जितना और खान है तो वही बा ओके ले आई कि सबन सीकन हिस में धरी से और फॉर लोपक ऑंडरसुक फन पुलिस इज नार फोरन gekomen दैट द ट्वेई फरदाक्टन इन इट फॉर vermoedelijk zaken dienen met de slachtoffer. Toe janta, ye sab baat hai Cuban ke aur na khali Cuban ke dosto aur samachar aap log ko hum batayenge. Ab dekho football wahi ka hoi bhai, sab koi lobby kare hai wahi ka. माँ वेका में सबन बोले है जोगी बोले है रख रेंगवा भैया 500,000 डाला भरी से और का बोले है का टेलीफिसी के एसेंट के का बोले है रक्त कीने के बारे में तो बोले पैसवा कहाँ मिलल बोले ई सब ना बतावे है तो अब गैगरी रसलान एकर बारे में बताई से बतावे यहाँ पे कि तोरिया कैसे है दोस्तों। गैगरी रसलान यहाँ बतावे है कि तोरिया कैसे है यानी कि वो जो 450 यानी कि फीफा के पैसों भरे के रखेरिंग बताल द हेल फन फीफा लाइसेंसी फॉर वी का आइसेंडिंग फियाद एर बोले आधा है तो जब पूरा रहत तब तो हो जात भैया ना फिर तब तो 1,000,000 डाला हो जात भैया 1,405 तक बतावे हिया रखेरिंग साल एसटीफे बोले फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग देबे फॉर लीडर फीफा लाइसेंसी के बारे में और बोले है फीस प्रेसिडेंट जॉर्ज रसलान बोले है openbare vergadering met nationale assemblee mee. Volgens hem zal de overheid de helft van de kosten voor haar rekening nemen, terwijl STVS het resterende bedrag via sponsoring moet zien op te brengen. Toen ik erbij met Jogi bole raak, kan hij naar sponsors het doen verwaven. Toen heb jij ik Rusland hier betalen dat aadha paisa STVS zelf sponsors het kojiga en aadha paisa regering bariga. Toen hier betalen hij gaf aan dat de kosten van de uitzendrechten dit jaar naar verluid ongeveer $450,000 bedragen. De regering heeft volgens hem besloten STVS opnieuw te ondersteunen. Tussen naam met paisana en kaas met bhaiya. Aur ka bole hega. Admi Jarun mangi voetbal deke bhai. Dat is ook een recht op alle burgers. Joan voetbal mangi deke. To ye kaam to chahi ho ik. Lekin probeer. Dit via de sponsoren te halen mensen. Niet हम लोग के स्टार्स इस ऑल हील एर डगमग डगमग भैया और एल्क सेंचेस एल्क डबलचूस मुटे उम खदराइट वर्ड कि कहां हम दे और कहां ना दे वो भी तो अलमाल हो दी देंगे समकार से भाई तुलन तो जानो एक बारे में। अब जनता हम जाई और आगे जाए क्यूबान से लेर लेंगन ऑफ स्कूल। अब क्यूबा के बात जो हो गए है तो यहू बताए कि क्यूबा के लड़कन आजकल सूरीनाम में नीदरलैंड से जा सी के भैया हाँ het onderwijs in Suriname is niet voorbereid op de komst van Cubaanse kinderen die grotendeels zonder verblijfdocumenten in Suriname wonen en thuis uitsluitend Spaans spreken. Sinds 2020 kwamen netto uiteraard heel larken aan en gharen zijn Spaans spreken en die zijn gezegd dat सूरीनाम के स्कूल में भैया लेकिन सबके घरे पढ़े और सब एलिखाल ओले भैया तो कैसे जाइए यहाँ बताए गए हैगा स्पांस तालक केंद्रन और बोले हैगा ऑन द स्ट्रीट Hoogdorp leerkracht op de basis van bestuursleer van de vakbond Wisa Stree के बारे में है। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता आप लोग को हम और आगे अपना प्रोग्राम को बताते हैं। अब देखो भैया यहाँ पे हम बोले तेरी कुछ बैचलान के बारे में बताए तो लोग जानो रोमेनिया में भैया ड्रोन गिरल है जहां आदमी रहे है। कुमार शिवलाल आपको हम स्वागत करते हैं। तो ड्रोन गिरल है रसलान दागत रहा ड्रोन उक्रेन पे।

जाए के गिर गए है एगो फ्लैट पे और है रोमेनिया में, और रोमेनिया कुंच भैया उन्ना फोलांत के आदमी है। अब एकर बारे में बारा जुगु जुगु हुए। अब रोमेनियो बोले हैगा कि हम लोग के नाफोलांद चाहे बसकादक करे के बाकी रसलान ना गए और लोग अटफूर करे। रोमेनियो से उजाई के गिर गए है एगो ड्रोन जो उदागर मांगत रहा जाए के उक्रेन पे। तो एक बारे में क्रेमलिन मॉस्को से और बोले हैगा बैतलान से साक मारिया सागारोफा रसलान के रोमेनिया फरक्लार द सुख के रसलान के कौंसिल में तो पर्सोना नॉन ग्राता एंड स्लोट एंड कौंसिलात nadat een volgende Roemeense Russische drone had geleid tot brand in het vlak en nabij de grens met Oekraïne. Obolehega drone incident als een ernstige en roekeloze escalatie van het Kremlin. Het land zelf kondigt aan nog vrijdag te investeren in betere droneafweer. Daarvoor wil het geld gebruiken van de Europese zeefondsleningen. Dus Roemenië of Rusland via Tolonja, Roemenië of Polen Tolonja een grens behegen. En dat zijn de risico-wekker maar mee. De Rusland zegt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen. De opkomende maatregelen lijken op ik erbij mee. Jaisi rega aanplukko hem. Betaengen Zelensky beschuldigt Rusland van drone incident van Roemenië. Ke bare me hamare janta. Ab dekho bhaiya hum jai hai Japan ke Suriname me bhaiya Japan ke auto bhar gaye chalo na pare jane hain kai rakam auto sab Japan ke auto chale hai ek rahi self ko Japan se auto mein se hai steve ko motor bolye Johnny reklama kare nahi mat dat is ook zo dat weten we allemaal. अब हुआ के जनता जापान के बोले है अफकलोपन पांच बरिश में बीते हुए पांच बरिश में 2.5% बोले हैगा अफकलोपन बफॉल्किंग फॉर जापान इस अफकलोपन फाइव यार में 2.5% अफकलोपन जनता कमती हुई के 2.5% और बोले दैट कोम एरोब नेर कि फोरक है यार 3.1 million मिंदर मेंशन वोंडन इन 2020 एंड grootste daling sinds Japan met volkstelling begon in 1920. Toen ja, India halker is Japan ke bhaiya India met aur jada admi hoi ge hai. Japan ke bevolking bole hega 128 miljoen mensen na 2008 me ya bataye gaye hai aur bole is saka hue admien hua pe aur toen jano ho bhaiya baby jo hai vorig jaar 705809 babies geboren bhai la 1,6 miljoen admi maral ha. तो ज्यादा आदमी मरे दाना बेबी खबर हुए तो बढ़ंती जो देश के उसका हुई एट हेड पंडर सुप्लाई दैट जापान 2023 फॉर एन दर्द एट 65 प्लस बस्तों दाना सो असर ओक 10 मेंशन 80 यार ऑफ ओदर। तो बोली कुछ जापान के बारे में आप लोग को हम बताई दे कि तोरिया कैसे है भैया कि जापान में आदमी कैसे कितना जनता हुआ रहे। अब भैया तमाशा देखो तो लोग जानो है ईद उल फित्र और का बोले ऑफर फेस्ट रहा। आप सबको बधाई हो मुबारकबाद देते हैं हम यहाँ से। लेकिन ऑफर फेस भी भैले पूरा दुनिया में जहाँ हमारा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं और जब वहाँ पे अब ये बात हो रहा बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में भैया सब एक भूल के लेकर बेफल के लेके गए और ओके श्राक्ति करे मांगी भैया तो वो बेफल हुआ से भागल है भैया वहां से वो बेफल भागल है और बेफलवा बहुत मोई लगे बेफलवा देकर भैया ओकर बार और जितना है कि आपने सोशल मीडिया पे ये तो देखिए ओकर नाम सबन धरे से गया दोना त्रेंगमल लगे भैया ओकर बार और सब बगलिया में इसे झारल है हाथ दी मार ए फ कहकर और ओकर नाम अल्बिनो बेफल बांग्लादेश में और वो भाग्य है तो इतना मोई लगे वो बेफलवा मतलब वो भूल जोन है हम उनका बोले लोग के भैंसा बोली ना मेरे ख्याल से
तो ओके सभन बोले ओकर गटाई ना काटीगा तो ओके ले जाए के गो धीरन तैन में धर दी से बोले दा दोर से ब्लोंदा हार दोनाल ट्रंप वर्थ खनुम ओकर नाम वे फलवा के धर दी सभन दोनाल ट्रंप भैया प्रेसिडेंट जो हम लोग के अमेरिका के वन ओकर बरवा परसीस ओइसने लाल लाल बगरियाम ऐसे झारल है तो कुमार शमी भी आ गया है आपको हम स्वागत करें चांदनी जितन भी आ गया है मतलब कि राकेश आ गया है हाँ तो राकेश जी आपको हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड शहर से मेरे ख्याल से हाँ तो यहाँ बताए गए है कि ओकर गटाई ना काटिस अब बांग्लादेश के रखेरिंग का करी से ये भैंसा के ले जाए के दीरन तैन में धरिस की तुलन एके का बोले है अने पोसो फॉल्कर मिर्धा हेफ्ट है दीर अन बिसोंदर सख्त अर्धक कराक्टर द ब्रूर फंद मिरादा बदाख द बैनाम डोनाल्ड ट्रंप ओम दे से कैप्सल एरख लाइक ऑफ दैट फ्रॉम अमेरिकनस प्रेसिडेंट अ 680 किलो के बा वेगन द बफल वेट एयर दिस वीक फॉरकोख ओम डोनरडाग ऑफर टू वर्डन टेडिस ऑफर फेस इट इज मुइलक ओम अफस्केट फ्रॉम हिम टू नेमर मार एन ऑफर दीर इज फॉर द ऑफर फेस व सेलन डोनाल्ड ट्रंप फॉर ऑल्टेड हेरिंदरन से मेरा तेगन द क्रांत ओबले मार ओपे लास्ट मोमेंट वेट है दीर गरेट फ्रॉम द स्लाग फॉलोस अ बांग्लादेशी मिनिस्टर Wanneer donderdag tijdens offerfeest zoveel mensen op de buffel afkwamen dat het niet meer veilig was. De Bangladese overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald en het dier is momenteel in de dierentuin van hoofdstad Dhaka. Ja, aanvloon je joh, ja. Dhaka, te jaroer je joh. Ane jane Bangladeske Donald Trump ke dekhe. Ye baat hai hamare pyare pyare janta. तो हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हैं ताजा ताजा ताजा ताजा खबर भैया घर में सुखना है सुरिनाम देश में घर बैठे सब तो के मार पीट के लूट लेवे भैया लूट लेवे है यहाँ पे देखो एगो जगह के नाम है बेला दोना स्ट्रात सुरिनाम देश में है और वहां पर कौन ची लेगे भैया चर चर लुटेड़ा हाँ रात के और गैल 1000 SRD लूटी से भैया तो चार मिला कि कई मिला रहा कैसे बटिए पैसवा और एगो में मोबाइल टेलीफोन और बोले हैगा अरमिया बोले फॉल्कन्स एमका हाथ है नेचर एरबल जैसे वो घरे गईल है उतरे में चार आदमी के अनफाल करी से पिस्तौल ले के बदरेख करी से और करतास ले गए स्पिलर हाँ ओए मैं खाली 1000 रुपया पैसा रहा भैया 1000 रुपया में तो हुआ का बोले हैगा कौन ची पहिए भाई बाकी उतरा बड़का ओवर फाल सबन करी से पिस्तौल ले के तो ये बात है हमारी जनता तो एगो बहुत जबर बोमा मिलल आना कोंदा ना लाओ लाओ चीज है बुद्धू चांदनी जबर जस्त तू जाने सरनाम में बूढ़ा भाई पानी इतना बरसल है चारों बगल बूढ़ा है तो जनावर अजगर जितना चीज है सब अपन होल छोड़ छोड़ ऊंचा भगे है तो यहाँ बताए गए हैं यहाँ बताए गए हैं सुरिनाम में बरखा से गो वो वेक है वहां पर जहाँ आदमी रहे है जबरदस्त बोमा हुआ गैल है भैया और इतना भारी बोमा हुआ गैल है रेप्टिलन खान तैन स्वार फाक ऑफ द सुकना रूख एंड फेल प्लेकन यहाँ लिखल है अपना लड़का के बचाई के रखियो भैया औरतियों के पकड़ के बैठियो वन बोमा ना देखे ती लड़का है कि कौन ची है मुर्गी है के डुक्सी है ओके जब महकल ओके जब महकल तब ऊ तो के लपेटी एगो खराफ मशीन से जे के सब बोले है पकलेन ओसे सब टांगी से हम खुद इतना बड़का बोमा ना देख ली भैया बहुत जबरदस्त बोमा है और बताए गए हैं द साम लीफन वर्ड आर्टिफिशियल अलर्ट द ब्लेफन में से फन दिस सोर्ट अन रेप्टाइल बेस्ट में से आप लोग को ले जाए तेरी कालम की ओर हाँ
कलम के संगे भैया बारा छिछा के लिए दर है नानी, वो छिछा के लिए दर है भैया। कभी देखियो तक कलम में आए तब उस के सुरीनाम में सांदराई पे देखिए फरकेस ले दे न जाए के कायन में उतरे तक गायना में। अब दूसर चकल्लस भइल है नानी, दूसर चकल्लस भइल है। और वो बताए गए है कि कलम के बोले तेलवे न पाई सरनाम में भरे के केरोसिन, तब बोले वो उड़ के गइल है, उड़ के गइल है फ्रांस गुयाना में भरिस तब उन्नीदलांतर खाइल इसके बोल पे भैया। ये बात बतावे है कालम, अब सुरीनाम के हुआ पे सब संदराई के आदमी ऑन द सुकर की चीजुआ कैसे है। तब बोले कालम बोले झूठ बोले है, बोले अब दैलक आयल है ब्रांस्ट ऑफ क्वेस्टी रोंड कालम जो योहान अदोलफ फेंगल इंटरनेशनल लुखाफन सुरीनाम में बा मंगलवार के कालम जाए के फ्रांस गुयाना में भरी से तेल, तब उजाए के उड़ल है और मेल पे बोले सुरीनाम में बोले तेल ना है। तो यहाँ बताए गए हैं फोल्क्स वार्निंग मस्तास ओली डायरेक्टर एडी फ्रंकल बोले ये बतिया नकलोप होएगा और बताए हैं कि चीजुआ ऐसे ना बोले कालम बोले पैसा ना भरी से द क्वेस्टी ड्राइव फोल्कल फ्रंकल ओमन बताले खस्किल तिस कालम एंड गो टू द डोंडर द डॉक्टर मास्कपेई फन स्टास ओली वार द फ्लिक मास्कपेई ब्रांस्टोफ अफनी फन गो टू बोले बेहर बताले फन अ ब्रांस्टोफ रेकनिंग ओक एन फी नामस द स्लख्त एन लुफ्टहाफन एंड ड्राग हेड बेड्राफ फोल्कस अफ एन तो पैसा ना भरेला भैया कोनो फेसे। तो ई कालम इतना झूठ बोलिस भैया, लेकिन सच्चाई कैसे है। कालम हिव गो टू इन मिनिस इन कोर्ट खदे खदाख फार द सात दिन फ्राइडे 29 मई दौर तक खान। तो बतावे कालम सऊदी फी आ लंगर तय नहीं बतालन दार दौर हिव गो टू हेड बद्रा फोल्कस फ्रंकल मेर ना अन यार फोर गेस्कोटन इन मिडल सो द अख्तरसन फ्लिंग सेन ऑफ gelopen en wil go to dat KLM eerst betaald voordat het brandstof wordt geleverd. Maar zo is het mensen. Toen mangen he kabole hega paisa na bhare te kamua thoro bani KLM to hum log ke price chadhai se te kahe na jai ke Surinam ke tel ka paisa bhare aur janta pe laaye. Aap log ke sain malum hai bhaiya hum KLM ke bejitti na karila mar ek pe self me khama miskin hai wo yule ok me khama jab tu KLM mein baithiyo bhai और हुआ पे तरी से इसके फॉल पे जो फरतराखें हुई है तरी से लाती हुई गए जैसे कि उके उड़े के 12 बजे मान लिया जाए। अब 12 बज गए ट्विन तक मनीतन ऊपर हुई गए तब जाने कहा बोलेगा बोली पासा चिरुआ कोफरवा भीतर हम आई गए म पासा चिरुआ पता ना कहाँ जो उसमें सैन बीस सख्त कोफर तरख चला एक है पन पार के रे मेकअप ऑफ दैट waar is mensen, dat weten wij niet. Maar als ik de situatie lees over de kerosine probleem van KLM, John Ulkaliski zijn naam getelen hij, waarvan de situatie dat KLM niet betaald had, dan geloof ik KLM heel minder nu mensen. KLM gaat elke keer draait diezelfde plaatje. Die persoon is nog buiten, die koffer is ingeladen en die koffers worden weer teruggezet, waardoor wij nu een beetje laat zijn met KLM. Dit heb ik niet één diverse keren dezelfde bandje draait dan mensen. To Ursula Bagus Samuj bhi aa gaya hai. Aur yani Rakesh Samuj ke niche Ursula Bagus Samuj bhi aa gaya hai. To aapko hum yani Pandit Tilak Dhari Vek se swagat karte hai yahan Den Haag se aapko. To जनता और अब जाएला चिनैनी की ओर नानी छाउमांग छाउमांग छाउमांग चिनैनी की ओर जाएला भैया चिनैनी की ओर हम जाते बोलिए जॉनी चिनैनिया नासी बनाइस की बामी बनाइस चिनवा चिनैनी 40 बरिस के चिनैनी भैया बातचीत हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रांड के बातचीत हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रांड के बातचीत हो रहा है और बताए गए है बोले एगो टिप क्रिक द चिनैनी से फ्रोन
op het betreffende adres onder dwang werden ingezet voor protestue bhaiya ego tip sipahi ke milal hai ki wahan par protestue ke kaam chinaini kare hai ye baat ho raha hai Wolf Ramstraat में भैया लो ना जाइयो 1200 के सरनाम में जूता पहन के जाइयो हमारा भैया लोन सूरीनाम में बहुत जबर हाईफी फ्यूरस हो गए हैं हमें याद हुई कि हम बताया बीते हुए दिनों में इसका न्यूज हम पठारी बुद्धू कान खोल के सुन ले ना जाइयो जाची रही लगे हम अदरस वहाँ डेरा वॉलफ्राम स्ट्रांड में भैया वहाँ पे मेंशन हंडल हो अतरा चिनुआ के तत्तेप मिले है तो बोले अब बत्रेफ अंदर अंदर दुआंग वर्दन इन खसेन पोर्फोर प्रोटेस्ट Twee naar aanleiding voor dit informatie werd een inval uitgevoerd waarbij twee vermoedelijke slachtoffers werden gevonden. Ja, dat doe je mila huapé. Doe je go ouchaurike natuurlijk paisoi. Op basis van de aangetroffen bewijzen, verklaring van de twee slachtoffers werden verdachten. En afstemming Surinaamse sipahi ook gelegen heeft. Abgeile de keke ke ook is mokkel kerke laise. En keise toria. भैल है हमारे जनता हम सोचित लोग के को गनवा सुनाई दे ना तो गनवा जो सुनाई देवे तब अभी हम तुरंत आ जाएंगे।

और दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है, इसीलिए हमें इसको तरी से रोक कर अपना समाचार को आगे लेकर चलना है। तो ध्वनि श्री आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मालूम नहीं काड़ में है कि बस में है, लेकिन है रेडियो फाउन पे। तो दोस्तों हम चलती है यहाँ बातचीत हो रहा भैया, सब कोई बोले पड़ोसी नैली रघुनंदन महावीर आ भी आ गए हैं। तो नैली सब कोई बोले हमारे पड़ोसी भैया, अच्छा पड़ोसी बोले बहुत खुश नसीब वाल को मिलता है। हाँ जेके खड़े वही मोई बिरमान पाई बिरफराव पाई पाई गले करो खच्चड़ भैया एंट वे दरी लगी देर बेल दबावे। लेकिन यहाँ बातचीत श्री नाम के हुए है, यहाँ बातचीत हो रहा है श्री नाम के लुका स्त्रात के बातचीत हो रहा है। यहाँ पर जब तू बाजा जोर बजाइयो भैया देर बेल दबाई पकड़ ले रहेगा भाई, ये कुछ रही डायरेक्ट क्लाख्त। तो मोतर फिच पे लोग जा रहा है, फिर भी रेडियो फाहन को सुन रहा है, दोनों हाथ से स्थिर को पकड़ना जोर से। हाँ और यहाँ बताए गए हैं एक 25 साल के फैफन ट्वें तक यारक क्लेरेंस है। बतावे गए सूरीनाम में भैया एक सिपाही पकड़ी सी का कर ले रहा भैया, ये का करेला लुका स्त्रांत में। बताए गए है ना एक नाई कई बार भैया, वार है फोकस ऑन की हेयर हाल दल फॉर एनस्ट को ओवर लॉस एंड बदरेकिंग ही फॉर सोरख पा सूरीनाम देश के बात है। बोलिए दमिया दुरुक्स फॉर सलाफ वीर मनवा हमारा बा, तब तो और गड़बड़ भैया जब तू दुरुक्स पीयू के नशान रही है तब बताए से फरकलाल अल खरोई मत हिंदर तो अंदर फिंदर फन हार वीर मन क्लेरेंस फोकस हार इसे दुरुक्स फरसलाफ्ट। अब बताए है सो ईर्दर हेबन खदरेगत हर वोनी इन ब्रांत स्टेकन दाना सो है यार एन हार गजीन स्टेलसल मातक हेबन लास्ट गफालन एन बदरेगत मेंसे। तो ये बात है ये जिनकी जाए के अपन बीरमान के बदरेग करत रहा भैया, कई बेर बदरेग करी से और लड़त रहा उसे जो कर सलाब कमरा में भैया जाए के और वो का बोले एस्कालेर करी से इसे होर्द फरदाख्त तकीर खान वरना से स्लाब की आमर में घुस गए भैया। तो जिनकी तोर बगल में है कोई ना मांगे ऐसन बीरमान भाई, सब कोई मांगे हमारे बीरमान नेचस रहे। बोलब की बीर फ्रो हमें सुकरू लेनी कर दिए तो के बोले के कमवे नोलाए के तो के मीठा मीठा सुकरू रे अगर देखो चुम्मा भी दे दे मीठा मीठा। दोस्तों ऐसन बीर फ्रो चाही और बीरमान हमारे पेड़वा झुक गए तरी काट दिए ना बीरमान। बोली बोली तो के बोले के काम है ये ना हम अपन काम छोड़ के आयला करे तो ऐसन बीरमान ना चाहेगा तो नहीं। तो ऐसन बीरमान नसीब वाला के मिले भैया, ऐसे थोड़ो मिल जा। आप देखो शाया का बोले है मेक्सोन शाया हाइटियान है भैया माऊ का बोले है मिनिस्टर फॉर यूजीसी एंड पॉलिसी के और मनोरथ के हनीश मनोरथ के बोले आज फिशर है और एक कोई मंगबे ना करे भैया वहां पर जैन साया मिक्सोन का बोले है बोले 10 गो पिकअप बोले हम देती लांटी के सीकर उही के मारे पिकअपुआ खातीन के माता अश्विशेर बनावे। तो हाइटियान के बोले रहा बोले 10 गो बोले 10 गो बोले पिकअप हम ले इफर करती आंसरी नाम से ओवर हेट के सो दैट वेरक्स नाम ही इन बेहतर आउट को फूड कॉर्नर वार्डर एंड हमेश का दारफान ओक सो कुन प्रोफिटेरन निश्चित है दारफान एंड daarvan af vanwege de negatieve uitlaten richten hem naar dat betekent bekend werd dat hij adviseur van Jusbon minister Haris Manorat bolle ki ap bolle hem pike poa na debe omdat ja adviseur na bati admino klak kari te bolle hem na debe das go pike poa to ta Haris Manorat ke ise bolle iste ta lalish deishi bhaiya Haris Manorat ke ki to ke hem 5 go pike up debe hame tu bana le apan adviseur ta janta hua pe bahu kritik le ifak te bolle hem pike poa na debe het soort stoort de voormalige VHP sponsor vooral dat hij in een DNA zwaar is berkisteerd
Opbele terwijl hij juist iets goeds voor het land wil doen, mensen. To bina bhaiya chara ke machri na mile hai. Bhaiya, somar pick-up wat to thoro di hai. 5 go pick-up di hai. Ta to mangye okar 10 guna lanti se lewe. Aur na aise jamana hai, hai na bhaiya buddhu. So so me koi ek jhaanpad na mange mare. To 5 pick-up di hai saya. To socha hai tiyan hum log baati ka. Na na na na. Bole alles heeft een reden, mensen, zonder de minister. Het weet, ik heb 26 pick-ups die onderweg zijn en ik zou daarvan 10 pick-ups aanleveren. Willen ze, mochten ze nemen en wanneer het geld er is, konden ze me betalen. Ook al is het na 5 jaar, maar door die jugu-jugu ga ik je eerlijk zeggen, dan mi abik. Kanami ede, zei Shaya in de interview. Bole hem na debe. To ye baat hai, Shaya ke baatjeet ho raha hai. Hai tiyan ke bhaiya, kahan itra paisa paise. Ab ekar batia chahi on the suk kare ke to. Lekin hamar Suriname me kahan hai fiat bhaiya. Glat hai, baki koi obdraak na debe hai. Ki isa manayyan ke tu jatari on the suk kar ki tu. Itna din se deswam baate, kahan tu itra paisa paile hai, kaise tu itra moni mang hoi gele, na khali eke, ma aur to ke chahe ondo suk kare ke chijua kaise hai. To ye baat hai, hamara president Suriname ke Jennifer Simons apan pura delegatie leke Brasilia me gai le bhaiya, apan admi ke bhi lege hai ga, bole Brasiliaanse lucht maar afgereis na Brasilia voor officiële bezoek, het Surinaamse stadshoofd zal aansluiten en eveneens een officieel bezoek brengen aan de Dominicaanse Republiek. Toen wat heb jij Glenn Geerlings ook al het meebegeel heeft. Delegatie leken. Maar in welke hoedanigheid hij aan de reis deelneemt is vooralsnog onduidelijk. Waarvan Simons Boller haar. Bolle ook al het meebegeel heeft. Ik kom een regering mee deelnemen. Maar toch ook al zijn ja. Maar ook al het meebegeel heeft. Ketiker bharé, kena bharé. Ek er baare mee kuch pata na hai. Aap loon jano bhaiya, ego hin हिंदुस्तानी भैया एगो हिंदुस्तानी बस शफेर है स्कूल के लड़कन जन मोई ना रहा बेमरिया तरी लड़कर रहा ओके जाय के बतस्त करत रहा एगो 53 यार के हिंदुस्तानी बस शफेर है और एके भैया होफ में गेल है एके मांगत रहा ने छोड़वावे और ई अफका चंद्रा अलगू बोले धार्मी ब्लेव द एडबस लीसिंग वार में अनहोल्डिंग एंड फॉरसीकिंग स्टेलिंग फॉर द फरदाखते रहमतक वर्दन फॉरक्लार फॉर in stand op bolle hega 20 tarik mei ke oke chama pakadi se jema an kind in zijn bus zou hebben betast het verzoek op basis van artikel 54a wetboek strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen daarna stelde de raadsvrouw hoger beroep in tegen de buskicking. To ye sab baat hai hamari janta. To hum ek do samachar aur aapko sunayenge. Ab dekho bhaiya forakh regering leende ek aur regering leene kal raha 5 varsh mein 2.2 miljard American dollar aur ek varsh ke bhitar mein 1.8 miljard leni 10 mahina mein kari se bhaiya forakh regering san to ki 2.2 miljard leni kal raha 5 varsh mein aur ya Simons ke regering aur Rusland ke regering 10 mahina mein 1,8 miljard leni kar chukal hai. Ek er baare mein minister Adelien Wijmerman van een financiën planning zo juist gemeld in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wijziging van de comptabiliteitswet 2024 mee. Minister Wijmerman ging verder in de op de leningen die door deze regering zijn genomen. To yes, bemaante dosto. Aur hier hebben we betaald de stichting Single Model Project Suriname over de menstruatie ke baare mein bole hain. Menstruatie producten van minderen school en werkverzuim onder vrouwen en meisjes in Suriname. To bhaiya Ranjit Lakshmi Narayan Singh bhi aa gaya. Sita Dihal bhi aa gaya hai. Tony Istri aa gaya hai.
इसी प्रोग्राम एक गिरके से आज हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेगा। नली रघुनंदन भी आ गए हैं, धर्मेंद्र इसरी, राजराम लगन चित्रा अवतार दिल बुद्धू या फतिंगन राम राज रंजीत राजा अयोध्या तोनी इसरी चांदनी जितन कुमार शिवलाल ये सब हमारा प्रोग्राम में आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में भाग लेने को। आने हुआ हफ्ता में हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। बाय बाय, नमस्कार।

रेडियो पर आप चुन है और यहाँ से आरम्भ होता है क्या हो तेरे और दर भड़े गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से।

जीवन, जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

किया हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार टू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

जाता हूँ। चलो तुम छोड़ मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरा वाला दर भर गीत ब्रुकनहा सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहोन हिंसाइन रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नति यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र टेक ऑक्सीस '68 इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है तमारा। मलेशिया से ओडर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीगर तक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु के तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किसी म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्ताइट में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज़ के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवा तैंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरप तरप पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी के आवाज़ में बीते लम्हे।

1967 निघटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाए सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल्स प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2004 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 63 साल के उम्र में इन देर तक मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

यादों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। उन्हीं सैनिक पर आप चुन है, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों। फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आइए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यार सेफन शेस्तक तो निगरी सीफन तक जब ले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब के आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है

होता है सितारों का सफ़र, और सितारों का सफ़र में आज शाम के प्रोग्राम में बप्पी लहरी द ब्लिंग ब्लिंग सांगर म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसेंट भारत का आलोक्स अपरेश लहरी, उसका असली नाम यही है दोस्तों, 20 नवंबर 1923 में पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोग बपीता के नाम से जानते पहचानते हैं, पप्पी लहरी के नाम से लोग भी उन्हें पुकारते हैं। वो एक सांगर था, कंपोनिस्ट प्रोड्यूसर प्लाट प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह। पॉपुलर था 1980 में बंगाल तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में। पिता अपेश लहरी और माँ बंसूरी लहरी, ये दोनों सांगर और म्यूजिकांत थे। बप्पी या मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग माता पिता का एक ही लड़का था, एक ही बेटा था, और 19 साल के उम्र में इन्हें उनका मामा जी या मामू श्रीमान किशोर कुमार, मशहूर गायक किशोर कुमार, बॉम्बे ले गया। पहला हिंदी फिल्म जहाँ पर वो म्यूजिक कंपोज किया वो था नन्हा शिकारी जो नीखंटिंग ड्रियन सी फंतक में बना, और पहला म्यूजिक कंपोजिशन उसका था तुम ही मेरा चंदा, ये गीत माइटी मुकेश ने गाया और सुलोचना पंडित के साथ भी जाना कहा है ये सॉन्ग पेश किया। मैं आप सभी के सेवा में ये सॉन्ग पेश करता हूँ, बप्पी लहरी एंड सुलोचना पंडित।

तो बबीता ने मिथुन को बहुत से मदद किया। जब मिथुन तप पे आया था ये बबीता का कारण हुआ। और फिल्म डिस्को सिंगर डांसर आपको मालूम होगा दोस्तों, ये फिल्म आपने जरूर देखे होंगे। उस समय डिस्को का समय रहा और हर एक गीत जो डिस्को से चलते थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते थे। मैं पेश करूँगा डिस्को डांसर का सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहड़ी।

ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी का एक दूसरा गीत है, बम्बई से आया मेरे दोस्त आपके खातिर फिल्म का नाम है, जिसमें विनोद खन्ना और रेखा ने काम किया, मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज में।

मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के घर पर इनकम टैक्स वाला छापा मारा दोस्तों, और उनका जितना सोना है सब इकट्ठा करके तौला तो लगभग 2 किलो का सोना उसके पास। लेकिन हकीकत में लोग कहता है कि बप्पी लहरी के पास और सोना है, लगभग 4 किलो का सोना उसके पास है। बप्पी लहरी मिस्टर बबीता फिल्म डिस्को डांसर का एक सॉन्ग है जिसमें बप्पी लहरी ने म्यूजिक डायरेक्ट किया। जिमी जिमी आजा आजा आजा,

फिल्म डिस्को डांसर का एक दूसरा सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। गायक है पप्पी लहरी और म्यूजिक भी डायरेक्ट किया है पप्पी लहरी। याद आ रहा है तेरा प्यार कहा हम कहा, पप्पी लहरी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

पापी लहरी पपीरा के नाम से भी लोग जानते पहचानते थे मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग। जब पप्पी जी कहीं लाइव शो पे जाते थे तो हमेशा सबसे बेस्ट सांगर या सांगरेस को जेबी में अपन गटे में से एक चेन एक केटी निकाल कर और तोहफा देता था। ये काम करता था मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग पपीता। पप्पी लहरी का एक दूसरा सॉन्ग है आशा के साथ, यार बिना चैन कहा रे।

1983 een Best Music Director geprijsd bij een film Sharabi Music Band 1991 en 2012 met die Best Music Director hua Papi Lahiri. अमित कुमार और एस जानकी के आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे जिसका कंपोजर है, इस गीत का कंपोजर है मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग।

सितारों का सफर आप सुन रहे बप्पी लहरी। बप्पी लहरी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उसके बप्पी लहरी का एक रिकॉर्ड भी उसके पास है, 12 सुपर हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया जितेंद्रा का फिल्म में। नेहरी सेशन तख्त के बाद जब उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम आया, इसलिए कि 180 नंबर्स एक साल के बीच में 180 नंबर्स ये पेश किया। और दुख के बात यह है दोस्तों कि बप्पी लहरी का मृत्यु 15 फरवरी 2020 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

सोनी मेरी सोनी सोनी, एक दूसरा सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सॉन्ग है दोस्तों। और ये गीत, ये फिल्म शूटिंग, इसका शूटिंग हुआ है हरियाणा, इंडिया का एक एक गांव है, एक शहर है हरियाणा। वहाँ पर शूटिंग के समय जब शाहरुख खान काजल शुरुआत किया इस गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये गीत का शूटिंग के समय वहाँ गांव के लोग, वहाँ के जो बसिंदा थे सब आकर घेर लिया और हल्ला मचाया, शोर मचाने लगा। तो जो वहाँ का फिल्म डायरेक्टर था उसको प्रॉब्लम था, वो ये शूटिंग नहीं कर सकता था। तो आमने सामने बैठा था फिरोज खान, मशहूर एक्टर फिरोज खान वहाँ शूटिंग के जगह पर भी बैठा था। तो ये उठ के गया है और ये हरियाणी, ये हरियाणा का लोग जो है उस सभी से हरियाणी भाषा में बात किया, सभी को भाई बनाया। तो जाकर शाहरुख खान काजल ने ये गीत को प्लेबैक किया, तुझे देखा तो जाना सनम।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ, चटनी सॉन्ग तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

चटनी सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए, क्या बात है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग। सब तो तैयारियां कर दिया है, उतार के बिग गया है दोस्तों। डांस कर रहा, लेट्स डांस।

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नाडिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

की बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहिल स्टीफन शस्त्र के बात है, जब ये सिनांदिस आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे एक पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पटा पटा।

0: हीलियम मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one.

जिंदगी चार दिन की, न रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन, ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए। अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका राम सुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

फन बैताली और अपवादिका राम सुकुल आपको सुनाने वाले थे। मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा, धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका राम सुकुल के साथ में। मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लालाराम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। देवेंद्र सिंह सिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मैदली के साथ।

इंद्र नील रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे, यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

काश बी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये मैदली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: सुन रहे थे बर्दाश्त नहीं कर सकता के और सुनिधि चौहान आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमराज से हमने पेश किए हैं तर्शन द वंडर कार इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ लाला रे
1: हे यू गाइस लिसन टू मी बेबी से ओ ला ला ला

From the movie Darshan, The Wonder Car, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं ऊ लाला रे के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल कह रहा है, From the movie दिल कह रहा है से हम पेश करते हैं और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए।

उदित नारायण अलका याग्निक के और कमल खान आपको सुनाने वाले थे। चलिए हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मौजा ही मौजा।

0: बच्चों, तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं। इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नजर में पकड़ लिया था, है कि नहीं?
1: जी दादी।
0: देखा भाई, सच निकला कि नहीं?
2: जी दादी।
0: अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफी होती है ये पहचानने के लिए कि लड़के और लड़की के बीच

अभी आप सुन रहे थे मौजा ही मौजा, और मौजा ही मौजा के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी धूम 2 से। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते क्रेजी किया रे।

The title from the movie Dhoom 2 से भी आप सुन रहे थे। कैश है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं यू आर माइंड, माइंड ब्लोइंग माहिया।

From the movie कैश से हमने पेश किया है यू आर माइंड माइंड ब्लोइंग माहिया खाकी है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ऐसा जादू डाला रे. आपको सुनाने वाले हैं सुनीरी चौहान.

0: फ्रॉम द मूवी खाकी से हमने पेश किए हैं ऐसा जादू डाला रे, मैंने प्यार क्यों किया। इसी फिल्म से आप सुनेंगे दिल दी नजर।
1: मेरी नर्स पटाएगा

शान प्रिया नीरज और शेषनायन आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया दिल दी नजर। प्रिंस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तेरे लिए। अतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

लतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए फ्रॉम द मूवी प्रिंस से हमने पेश किए हैं। बिल्लू है फिल्म का नाम, सुखविंदर सिंह और सुनीरी चौहान प्रोग्राम में आ रहे हैं मर जानी।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। कभी खुश यानी कभी खुशी कभी गम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बोले चूड़ियाँ बोले कंगना।

अभी आप सुन रहे थे बोले चूड़ियाँ बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर ख़ास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

कसम खा के कहो, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ? नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन चुके होंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार। तेरे आने से आए, तेरे जाने से जाए। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी रन से आप सुनेंगे।

से आए तेरे जाने से जाए। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: एवरग्रीन किशोर कुमार
1: और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उदित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊँ? क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक आपको सुनाइए लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है? आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए, आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे कहीं प्यार ज्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। नेगेटिव फिर सिर्फ तक 1974 का ये गीत मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए, क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में? अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने। चलो मिल के सुनते हैं।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM से 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

चामुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यसु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा। अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर हम सभी उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ शांता जी है और यूसुफ भाई जी है, मनीषा जी है, अनुराधा जी और बबली जी भी उपस्थित है। तो अभी कार्यक्रम जो एंट्री लेने वाले हैं यूसुफ भाई जी,

0: ईश्वर हर रूप में मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: अब मेरी बारी है, तो यहाँ से आपको हार्दिक से स्वागत है युधिका प्रकाश प्रोग्राम में, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

सुनने वालों, जैसे कि हर सप्ताह की तरह हम सब तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, उस ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे।

सुनने वालों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ जिसका विषय है जिम्मेदारी। ये चार दोस्तों की कहानी है और आप सुनना कि चार दोस्त क्या क्या काम करते हैं इस कहानी में। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। अब्राहम लिंकन जी ने कहा है, आप आज का काम कल पर ना टालना और कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका हम पर विपरीत असर पड़ता है। एक समय की बात है, एक शहर में चार दोस्त रहते थे। उनका ज़्यादातर वक्त साथ ही बीतता था। एक रात उन लोगों ने लेट नाइट पार्टी की, इस बात की परवाह किए बगैर कि अगले दिन उनका टेस्ट है। यानी कि चार दोस्तों का तुच्छ था, लेकिन वो पार्टी करने के लिए चले गए क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट की तैयारी नहीं की थी। तो अगले दिन सुबह उन्होंने उस टेस्ट से बचने के लिए एक प्लान सोचा, क्योंकि वो रात को पढ़े नहीं और उस तुच्छ से बचने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन लोगों ने अपने अपने कपड़ों में ग्रीस और धूल मिट्टी मिला दी। वे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुँचे और कहा कि पिछली रात को वे सब एक शादी में गए थे। उन्होंने कहा कि वापस आने के क्रम काम में उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया, इस कारण उनको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा। धक्का लगाकर ही वे अपने घर को पहुँच गए और इस कारण से वह टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए और अब वह टेस्ट लिखने की हालत में नहीं थे। और दोस्तों, उन चारों दोस्तों ने अपने प्रिंसिपल से झूठ बोला कि वो रात को गाड़ी से कहीं गए थे, उनकी गाड़ी का टायर फट गया और इसलिए वो टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए।

सुनने वालों, अभी आपने जो गीत सुना वो दोस्ती फिल्म से लिया गया था और ये फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी। अब मैं आगे सुनाती हूँ सुनने वालों। मैं आप लोगों को सुना रही थी चार दोस्तों की कहानी कि उन्होंने टेस्ट से अपने तुच्छ से बचने के लिए कैसे प्लेन बनाया और कैसे वो एक पार्टी में चले गए और दूसरे दिन वो अपने कॉलेज में पहुँचते हैं तो प्रिंसिपल उनसे क्या बात करते हैं। अब मैं आगे सुनाती हूँ सुनने वालों। प्रिंसिपल ने कुछ देर सोचने के बाद उनको 3 दिन का वक्त दिया और चौथे दिन टेस्ट लेने की बात कही। सारे दोस्त मन ही मन बहुत खुश थे कि उनको तैयारी करने के लिए एक अच्छा वक्त मिल गया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। चौथे दिन सब टेस्ट देने के लिए खुशी खुशी कॉलेज को चल दिए क्योंकि यह एक स्पेशल टेस्ट था, इसलिए प्रिंसिपल ने उनको अलग अलग क्लासरूम में बैठने को कहा। सुनने वालों, वो चारों दोस्त इतने खुश थे कि उनको खुशी खुशी वो टेस्ट देने के लिए राज़ी हो गए कि हमने जो तैयारी नहीं की थी हमें 4 दिन मिल गए तो वो अच्छे से पढ़ लिए 4 दिन के अंदर। वे सब अलग अलग क्लासरूम में बैठने को राज़ी हो गए क्योंकि उन्होंने इन 3 दिनों में अच्छी तैयारी कर ली थी। मगर पेपर देखने के बाद चारों दोस्त भौचक्के रह गए। उनका टेस्ट सिर्फ 2 प्रश्न का था जिसके अंक थे पूरे 100। सुनने वालों, वो चारों दोस्त अलग अलग क्लासरूम में बैठ गए और जब उन्होंने पेपर देखा तो वे हैरान रह गए कि हैं, सिर्फ 2 प्रश्न का पेपर था उनका। वे 2 प्रश्न थे, पहला अपना नाम लिखें 1 अंक, अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो उसका 1 नंबर होगा, और दूसरा प्रश्न था गाड़ी का कौन सा टायर फटा और उसके थे 99 अंक यानी 99। सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं।

0: न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। भाई जो हमारे साथ बैठे हुए हैं यूसुफ जी, और ये पुराना फिल्म से निकाला गया ये गीत, इसके बारे में आप शायद ये फिल्म देखे नहीं होंगे ना?
1: ना, ये फिल्म देख ली है। एक वो दलुक्स के फिल्म रहा, वो यशोधरा लाइस रहा, और साथ ही साथ ना ताजमहल अभिम तो या था ताजमहल में ही फिल्म देखा ना।
2: फिल्म का नाम
1: था हमराज, उसमें एक्टर था खेली से सुनील दत्त, राजकुमार और फिमी। और फिमी एक एक्ट्रेस रहा, बहुत कम थी फिल्म में वो भाग लिए हैं।
0: बहुत कम फिल्म में फिमी नाम से ना एक्ट्रेस रहा जो, और वो बहुत कम फिल्म में आए,
1: बहुत कम, हाँ
0: बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस भी रहा किया। और ये जो आपने कहा कि ताजमहल, ताजमहल कहाँ होते थे, हाउटन में?
1: ना ना, क्वाटा में,
2: भारत में।
1: वो तो ताजमहल शहंशाह के महिया एगो तैयार रहा, उसका नाम रहा तो ताजमहल।

0: न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, तो हमें भी अपना सर को नहीं झुकाना चाहिए ना यूसुफ भाई? एक कबुन्ना?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: ऐसा क्यों?
1: क्योंकि बदमाशी, आप कोई कुछ बदमाशी करी सही, शर्म है तब वो चीज होता है,
0: सर को झुकाना चाहिए सब,
1: तब वो हम ना झुकाए, तब पुलिस बोले सर झुका सकता है लेकिन सर कटा नहीं सकता
0: ऐसा। तो बबली जी, आप जो अपने जो चार मित्रों का वृतांत रख रहे है हो रख रही हो, तो आगे ले चलिए।
2: हाँ जी जरूर। तो सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी कि चार दोस्त अपने तुझ से, अपने पेपर से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। अब मैं आगे चलती हूँ सुनने वालों। चारों दोस्तों में से किसी का जवाब मिलता जुलता नहीं था, सब ने अलग अलग जवाब दिए थे। आखिरकार चारों दोस्तों का झूठ सामने आ ही गया। उन लोगों ने झूठ बोलने के लिए अपने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगी, साथ ही आइंदा से कभी भी ऐसी हरकत नहीं करने का वादा किया। प्रिंसिपल ने भी उनको एक मौका देते हुए माफ़ कर दिया। दोस्तों, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसे वक्त आते हैं जब हम जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। इन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

0: जैसे कि अभी आपने सुने, जो चार मित्रों पर ऐसा होता है ना बबली जी कि आजकल जो बच्चे भी और अपना टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो कोई कभी अपने आप को और सिग्नल भी कर देते हैं ना यूसुफ भाई,
1: वो भी होता है,
0: हो जाता कभी कभी,
1: कभी कभी हो जाता।
0: क्या आप अपने बचपन में भी किया है ऐसा?
1: ना ना ना, कभी ना सिग्नल तो कभी हम बास के काम तो करते ना कर लेते, कैसे सिग्नल तो कर ली।
0: मनीषा जी, इन बबली जी का इन इस संदेश को सुन करके आपका कुछ ख्याल आता है?
2: ख्याल एक शेर के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ, अगर आजकल के बच्चों को समझ आया तो ज़हे नसीब। कि कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, और कोई मंजिल पे पहुंचता है भटक जाने से। तो भाइयों और बहनों, भटकना हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी शायद कोई आपका हाथ पकड़ रहा है आपको भटकाने के लिए, और आपके भटकने से आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जिंदगी का सफ़र है यह कैसा सफ़र, इसके लिए तीन कुछ बेहतरीन सलाह जो बिन मांगे मुफ्त में हाजिर हैं। पहला, सोचो मत शुरुआत करो। पहला, सोचो मत शुरुआत करो। दूसरा, बताओ मत करके दिखाओ, बताओ मत करके दिखाओ। और तीसरा, मेरे सभी युवा साथियों के लिए ख़ास तौर से, कि वादा मत करो मगर साबित खुद को करो। तो इन्हीं सब विचारों के साथ जिंदगी की डगर पे चलने के लिए एक खूबसूरत गीत के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और कहानियों के साथ आपके लिए पेशे खिदमत होंगे दोबारा।

0: जिंदगी का सफ़र जो हमारे साथ और बैठे हुए कुलेखा साथी और मनीषा जी हम सबको सुनाने वाले हैं एक ऐसा संदेश जिसमें कितना और गहराई है। मनीषा जी
1: जी महसूस करें कि मैं कृतज्ञ हूँ, महसूस करें कि मैं कृतज्ञ हूँ, यह अति आवश्यक है जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए। इसी को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए पेशे खिदमत है कि एक रविवार की सुबह एक सज्जन अपनी बालकनी में बैठकर धूप और कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। उनकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी जो अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वे एक घंटे से अधिक समय तक उसे देखते रहे। उन्होंने देखा कि अपने इस सफ़र के दौरान चींटी को बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह कई जगह रुकती, मुड़ती और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जाती। एक जगह उस छोटी सी चींटी को फर्श में दरार का सामना करना पड़ा। वो थोड़ी देर रुकी, उसने हालात को समझा और फिर दरार के ऊपर वह बड़ा पत्ता रखकर उस पत्ते के ऊपर से चलकर दूसरी ओर पहुंच गई। दूसरी ओर जाकर उसने उस पत्ते को आगे ले जाना शुरू कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह सज्जन सृष्टि के निर्माता की सबसे नन्ही कृतियों में से एक उस चींटी की चतुराई से मोहित हो गए। इस घटना ने उन सज्जन को विस्मय से भर दिया और सृष्टि के चमत्कारों पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। इस छोटी सी घटना ने उन्हें सृष्टि के निर्माता की महानता को दर्शा दिया। सृष्टि के रचयिता द्वारा निर्मित यह नन्हा सा प्राणी था, आकार में छोटा, फिर भी परिस्थिति का विश्लेषण करने, चिंतन करने, तर्कशील होने, संभावनाएं तलाशने, खोजने और विपरीत परिस्थिति से उबरने के लिए मस्तिष्क से भरपूर। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इस समय समय हो चुका है एक गाने का, तो लीजिए पेश है आपके लिए मधुर गीत।

तो हम थे चींटी को देखते हुए उन सज्जन के साथ जो देख रहे थे चींटी किस तरह से बालकनी के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने से कई गुना साइज में बड़ा पत्ता लेकर जा रही है। अब उसको देख देख कर विस्मय से भरे वो सज्जन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, भगवान के इस सृष्टि की संभावनाओं से जो भरपूर है उन सब संभावनाओं को दिल से आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। फर्श में एक छोटा सा छेद जो ज़मीन के अंदर बने उसके घर का प्रवेश मार्ग था। अब सोचने की बात यह थी कि चींटी उस बड़े पत्ते को जिसे वो इतनी मेहनत और सावधानी से मंजिल तक लाने में कामयाब रही थी उस छोटे से छेद में कैसे ले जा सकती थी। नन्ही सी प्राणी जो तमाम श्रम साध्य कड़ी मेहनत और महान कौशल का प्रयोग करते हुए रास्ते में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वहाँ पहुँची थी उस बड़े से पत्ते को वहीं छोड़कर खाली हाथ घर में चली गई। परंतु वे सज्जन चींटी के छेद के अंदर जाने के बाद भी चींटी के बारे में ही सोचते रहे और चींटी की पूरी यात्रा को अपने जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे। वो सोच रहे थे कि जीवन क्या इसी का नाम है, इतने उतार चढ़ाव देखकर भी संसार का सबसे छोटा प्राणी उसने हिम्मत नहीं खोई। और इसी के साथ हम लोग एक गीत के साथ अपने इन विचारों को आगे बढ़ाते हैं।

0: हाँ, अबे हम मनीषा न बहन बोली से चींटी, तब मेरा सवाल है ये कि चींटी क्या है मनीषा?
1: यूसुफ भाई आप थोड़ा डर से लग रहा है।
0: ना ना, एक को बुना माइक्रोफोन चाहे और आ गया। अच्छा मनीषा से ये सवाल है कि आप अबे बोल रहे हैं कि चींटी, तो चींटी क्या है?
2: शहरों में पाए जाने वाले जितने भी छोटे छोटे प्राणी हैं, चींटी उनमें सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा प्राणी, उसको चींटी, जैसे आपने देखे होंगे छोटे मिठाइयों पर लगने वाले चींटे काले, उनसे बहुत छोटी बारीक सी, कभी काली कभी लाल कभी ब्राउन कलर की बिल्कुल छोटी सी प्रजाति, जो कहीं से आकर आपको हल्का सा भी काट ले तो आप डर से तिलमिला उठेंगे।
0: अच्छा मैं समझ गया, वो हम लोग बोलेला नीदरलैंड्स में मीरन चूती जो मीरन है,
2: वो चींटी जो अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी को भी पस्त कर सकती है।
0: ये तो सही है।
2: इतनी सी चींटी और काम इतने बड़े
0: हैं
2: जी, और इसीलिए कहते हैं चींटी की हिम्मत, चींटी का ताकत सब उनके परिश्रम में होता है जी भाई साहब।
1: तो मनीषा जी बात यह है कि चींटी पर हम लोगों ने, यूसुफ भाई हम लोग बचपन में भी चंगोटी भी काट लिया किया जाता था ना, तो वो बात नहीं, ये चींटी एक प्राणी है मनीषा जी।
2: जी भाई साहब,
1: जो चंगोटी कैसे कहते हैं आप लोगों, जो ऐसे
0: चकोटी काटे के,
2: जी उसको चिकोटी काटना कहते हैं या च्यूटी काटना भी कहते हैं हमारे दिल्ली के लैंग्वेज में।
3: चकोटी काट ली
2: हम भी चिकोटी ही कहते हैं, बट चिकोटी वैसी काटी जाती है जैसे चींटी के काटने से दर्द होता है ना, चिकोटी से भी उतना ही दर्द हो सकता है।
1: कहने के तात्पर्य यह है सुनने वालों की, जो संदेश जो चींटी का और जो दुनिया पे सबसे छोटा प्राणी है उस अंतर्गत में मनीषा जी हम सबको और संदेश रख रहे हैं। मनीषा जी,
2: जी बिल्कुल, सबसे छोटा प्राणी लेकिन उसमें हिम्मत ताकत और लगन, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके निरंतर सतत प्रयास, वो हमें भी सीखने चाहिए। जैसे जिन सज्जन ने उस चींटी को इतने मुश्किलों से, उस इतने बड़े, अपने आकार से कई गुना बड़े पत्ते को अपने छेद के बाहर तक ले जाते देखा, और फिर जब वो पत्ता उस छेद में नहीं समा सकता था तो चींटी ने अपने दिमाग का प्रयोग करके पत्ते को वहीं छोड़ा और स्वयं अंदर चली गई। तो वो सज्जन सोचने लगे कि क्या हम भी अपने आने वाले जीवन में परेशानियों का मुकाबला चींटी की ही तरह आत्मविश्वास और साहस के साथ कर पाएंगे। अपनी यात्रा के अंत में जब चींटी को वह पत्ता एक बोझ लगने लगा तो उसने बड़ी आसानी से उस पत्ते को बाहर ही छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गई, जो आजकल जेन ज़ी कहती है ना, मूव ऑन। जी चींटी बहुत पहले से मूव ऑन करना जानती है। अपनी सारी इच्छाओं को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारी खुशियाँ हमारी इच्छाओं पर निर्भर हो जाती हैं, और जब हम इन्हें पूरा नहीं कर पाते तो निराशा से घिर जाते हैं। कहते हैं ना आजकल डिप्रेशन हो रहा है, नया ट्रेंड है, लेकिन चींटी को डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि किसी भी तरह की निराशा को दूर करने के लिए आशा की एक किरण काफ़ी है। तो क्या हम भी अपनी इच्छाओं को आसानी से छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते उस छोटी सी चींटी की तरह? क्या हम उससे इतना छोटा सा लेसन नहीं सीख सकते, जबकि वो ना बोल सकती है ना कह सकती है लेकिन हम सबको जिंदगी का इतना बड़ा पाठ सिखा कर जाती है? क्या भी सोचा है हमने कि हमारे जीवन का मकसद क्या है और हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं? क्या हम यूं ही इच्छाओं के गुलाम बनकर अपने आप को समर्पित कर देंगे? स्वयं को इच्छाओं से मुक्त करने का एक ही तरीका है कि उनसे मुंह फेर लिया जाए और अपनी नज़र वास्तविकता पर टिका दी जाए। तो इसी सुविचार के साथ एक और खूबसूरत गाने से जिंदगी को और समझने की कोशिश करते हुए

0: सुनने वालों, हम आपके साथ फिर जुड़ गए हैं और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब लेकर यहाँ उपस्थित है हमारे कुलेखा साथी अनुराधा जी। अनुराधा जी, आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे। और संजय जी, आज मैं सभी सुनने वालों को बहुत अच्छी थोड़ी ज्ञान की बातें बताना चाहूँगी कि हम अपने जीवन में क्या करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने और हम सुखी जीवन और एक पूर्ण रूप से एक पूरा अच्छा जीवन हम व्यतीत कर सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं सबको बताना चाहूँगी। तो पूर्ण विकास की 16 सीढ़ियाँ होती हैं। ये 16 बातें आप समझ लें तो आपका पूरा जीवन बहुत अच्छे से कटेगा और पूर्ण विकास चुटकी में हो जाएगा। चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि कौन सी ये 16 बातें हैं। तो ये सबसे पहला जो है वो है आत्मबल। अपना आत्मबल विकसित करने के लिए आप रोज ओम ओम ओम ओम ऐसा जाप करें। आपको ओम का जाप करते ही आपका आत्मबल, आपको हिम्मत आएगी। दूसरी जो बात है वो है दृढ़ संकल्प। कोई भी निर्णय या कोई भी आपको कुछ कार्य काम करने से पहले कुछ करना चाहें तो आप पहले अपनी तीसरी नेत्र, जो हम कहते हैं आज्ञा चक्र, जो हमारी थर्ड आई है, जो हमारे मस्तक के दोनों आंखों के बीच में जो हमारा फोरहेड है, जहां थर्ड आई होती है, उस पर ध्यान करें और फिर निर्णय लें। और एक बार कोई भी छोटे मोटे काम का संकल्प करें तो उसमें उसी में लगे रहें। बस जो अगर आपने मान ली है ये काम करना है तो उसी में आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, उसी में सोचें उसी को और लगे रहें। चलिए तीसरी बात पता करते हैं कौन सी है। तीसरी है निर्भयता। जैसे भय आए, आपको कोई भी डर आए तो उसके भी साक्षी बन जाएं और उसे झाड़ कर फेंक दें। कोई आपको किसी चीज से डर लगे तो उस विचार को ही आप सोचे ना और उसको बिल्कुल अलग कर दें। ये जो आपका भय है, जहां आपने इसको झाड़ कर अलग कर दिया, यह आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका मन से भय निकल जाएगा। ये तो हुआ नंबर 3, निर्भयता। नंबर 4 है ज्ञान। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ज्ञान पाले। देखिए, ज्ञान तो हम किताब पुस्तक पढ़ते हैं और उससे भी ज्ञान होता है। आसपास हम जीवन में हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो ज्ञान बहुत ही जरूरी एक चीज है। यह शरीर जो क्षेत्र है, हमारा शरीर है, और आत्मा जिसको कहते हैं क्षेत्र है, इस शरीर रूपी खेत के द्वारा हम कर्म करते हैं। ये जो हमारा शरीर है, हम इससे कर्म करते हैं, अर्थात जो हम किसी चीज के बीज बोते हैं और फिर उसके फल हमें मिलते हैं। तो हम क्षेत्रज्ञ हैं, शरीर को और कर्मों को जानने वाले हैं। ये सोचिए कि प्रकृति परिवर्तित होने वाली है और हम एक रस हैं। बचपन में सोचिए, बचपन में परिवर्तित हो गया और हम उसको जानने वाले वही एक वही हैं। गरीबी अमीरी चली गई, सुख दुख चला गया, लेकिन हम वही हैं। अपने आप हर परिस्थिति के हम ही अपने जिम्मेदार हैं जो हम करते हैं। चाहे हमने जीवन में जो करा है वो हम जो करते हैं वो हम अपनी जो हमारी आत्मा कहती है, हम परमात्मा को हमारे दिल में बसते हैं और प्रकृति का जो आसपास का हम सब चीज का ज्ञान प्राप्त कर लें, तो ये सोच लें कि हम ही सब कुछ जो करें अच्छा करें और इसकी ज्ञान प्राप्ति, ऐसा दृढ़ विचार कर लें कि ज्ञान का आश्रय लेने से आप निर्भय और निशंक होने लगेंगे। एकदम से आपको अपने बारे में आपको ज्ञान होएगा, परमात्मा का, भगवान के बारे में ज्ञान होएगा और आसपास की जितने प्रकृति है, लोग हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, सब उसके बारे में जब आपको ज्ञान प्राप्ति होगी तो आपको एकदम से आप एक नया, जैसे आपको महसूस होएगा कि आप एक नया जीवन आपको मिल गया है। तो संजय जी, ये तो अभी मैंने चार बातें बताई, तो पांचवी बात क्या है? तो पांचवी बात ये है नित्य योग। देखिए योग जो होता है, ये योग का अभ्यास, नित्य योग अर्थात आप जैसे भगवान में थोड़ा शांत होइए और भगवान को आप याद करें। हम जब मेडिटेट करते हैं उसको कहते हैं मेडिटेशन, कि भगवान नित्य हैं, आत्मा नित्य है और शरीर मरने के बाद भी मेरी आत्मा रहती है। इस प्रकार की अगर हम ये सोचें कि हम एक ही हैं, मतलब भगवान और मेरे शरीर के अंदर रहते हैं और मेरा शरीर है और हम जीवन के बाद भी, जब हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा उसके मरने के बाद भी हम परमात्मा से ही मिल जाएंगे, ये हम रोज मेडिटेट करें, सोचें कि हम एक ही हैं, तो हमारा जीवन भी बहुत हम बड़े एक अच्छा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं, ये अगर हम रोज करें सोचें। दूसरी और जो छठी बात है, सिक्स्थ जो है, ईश्वर चिंतन, मतलब अगर हम रोज भगवान के बारे में सोचें, सत्य स्वरूप ईश्वर का चिंतन करें, जो केवल आप जिसको भी मानते हो, माने ईश्वर को, चाहे आप एक किसी को रूप दें या ना दें, पर उनके बारे में सोचें जिसने ये पूरा दुनिया जिसने बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया, बस उस ईश्वर की आप उसके बारे में सोचें, तो चाहे आपके पास एक मिनट हो या पांच मिनट हो या आधा घंटा, आप बस ईश्वर के थोड़ा सा चिंतन में करें तो आपको इतनी शांति मिलेगी। अगला है श्रद्धा। तो श्रद्धा, तो आपको पता है क्या श्रद्धा माने? सत शास्त्र भगवान और गुरु में श्रद्धा, यदि आप उन पर, ये वर्ड है कि जैसे आप उन पर बिना कुछ पाए बस उनमें आप मन लगाकर उनमें विश्वास है, श्रद्धा है, यह आपको आत्म विकास का बहुमूल्य आपका खजाना है। श्रद्धा दिल लगाकर अपना पूरा डेडिकेट करके भगवान के पूर्ण हो जाएं आप, और श्रद्धा भाव से बिना कुछ ये भाव से कि मेरे को कुछ मिलेगा, या नियमित रूप से आप रोज श्रद्धापूर्ण किसी के लिए अपना, चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, या आप कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, पुराने हमारे ग्रंथ हैं जो आप पढ़ें, उनको श्रद्धापूर्ण करें, तो ये आपके विकास में बहुत बहुत एक आपको जीवन में इसका आपको फायदा होएगा। आठवां है ईश्वर विश्वास। ईश्वर पर विश्वास रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। भले हमें अभी इस समय बुरा लगता है, पर बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, पर ये विश्वास लेकर चलें कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। बहुत बार विघ्न बाधा पड़ती, मुसीबत और कठिनाइयां आती हैं, तो आप उसको जहर विष की तरह वो हमें बहुत लगती हैं, लेकिन भीतर अमृत हुई होती हैं। जैसे कि आपको उस समय नहीं पता होगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उसमें भी आपकी भलाई है, उसके लिए उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं भलाई छुपी होती है। इसलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए तो समझ लीजिए ये हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। आंधी तूफान आया है, फिर शुद्ध अच्छा वातावरण भी आएगा। कोई भी गलत या खराब समय चल रहा है तो ये सोच कर चलिए कि आज खराब है, कल अच्छा समय भी आएगा। तो ये तो जीवन का लगा रहेगा, अच्छा बुरा अच्छा बुरा। तो हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें और जीवन आपका सुखमय रहेगा। तो संजय जी, अभी तो मैंने ये 8 बातें बताई हैं, और आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: अनुराधा जी, जरूर, 8 बातें जो आपने हम सबको सुनाए, अभी हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे, और गीत के बाद जो बाकी का 8 संदेश वो हम सबको और जरूर और रखेंगे। सुनने वालों, हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, हमारे साथ और हमारे कुलेखा साथी जो अनुराधा जी अपना आगे का संदेश और रखते हैं।
1: तो संजय जी, अभी हम सबको यही बता रहे थे कि हमारे जीवन में विकास, अपना पूर्ण विकास करने के लिए हम क्या बातें ध्यान में हमें रखनी चाहिए। और मैंने अभी तक सबको 8 बातें बताई हैं और आगे बताते हैं चलिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन अच्छा, हम अपना जीवन अच्छा बना सकें। पिछले उसमें मैंने बताया था ईश्वर विश्वास, अब आता है 9वां सदाचरण। तो सदाचरण माने कि वचन देकर मुकर जाना, झूठ कपट चुगली करना यादि दुराचरण से अपने को बचाना। आप अच्छा अच्छा व्यवहार करें, सदाचरण मतलब अच्छा। ये जो बुरी बातें होती हैं, जो हम किसी को वचन दें और फिर दूसरे की हम चुगलखोरी करें, झूठ बोलें, ये जो बुरी बातें हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है 10वीं बात जो है संयम। संयम माने कि पेशेंस, जैसे कहते हैं पति पत्नी के व्यवहार में हमें आपस में एक दूसरे के संयम रखना चाहिए, खाने पीने में संयम रखें, एक कंट्रोल रखें, एक पेशेंस रखें। इससे मनोबल और बुद्धि बल, आत्मबल का आपका विकास होगा। आप अपने आप को एक ये नहीं कि हर समय कोई खाने पीने की चीज़ देखी तो बस मुंह में पानी आ गया, खा लिया जो आपको, तो उसमें कंट्रोल रखें, संयम रखें अपने आपस में, अपने चाहे पति पत्नी हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपका परिवार हो, बच्चे हो, सबसे एक संयम के साथ रहें और सोच समझकर प्यार पूर्वक व्यवहार रखें, संयम से रहें, तो आपके जीवन में बहुत आपका जीवन सुखमय होगा। अब 11वीं बात है अहिंसा। अहिंसा माने नॉन वायलेंस। अब अहिंसा कहना तो इसका मतलब है कि आप अपनी वाणी, अपनी वाणी में मन बुद्धि के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचाएं। अहिंसा माने केवल ये नहीं कि आपने आप किसी को, किसी जीव, किसी जानवर को मारे ना, या किसी को, या किसी इंसान को। इसका मतलब है कि आप बुरा भी ना बोले, आप अपने मन के विचारों से भी किसी के लिए बुरा ना सोचें और ना ही किसी के, या आपके कुछ ऐसे आप किसी के लिए शब्द बोल दें जो जिसको चोट पहुंच जाए, जिसके मन मन जिसको बुरा लगे, यह सब नहीं करना चाहिए। शरीर के द्वारा जीव जंतुओं की हत्या, हिंसा ना करें, किसी को मारे ना, मारे नहीं तो ये एक बहुत, एक जीवन में अगर आपने ये सीख लिया कि हम सब जीव जंतु जितने हैं दूसरों के लिए हम हमेशा उनके लिए अच्छा सोचें और किसी को चोट ना पहुंचाएं। 12वीं बात यह है उचित व्यवहार। उचित मतलब अच्छा, गुड बिहेवियर। अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को, लोगों का आदर से हम उनसे मिले जुले, उनसे बातें करें। अपने से छोटों के प्रति भी उदारता और दया रखें। जो अच्छे कार्य में, देवी कार्य में लगे हैं, उनका अनुमोदन करें, उनकी आप इज्जत करें, और जो निपट निराले हैं उनकी उपेक्षा करें। यह कार्य कुशलता में आपको आगे ले जाएगा। तो हमें जीवन में हमारे साथ जैसे अन्य प्रकार के लोग होंगे, हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, चाहे घर के हों या बाहर वाले, हमको सभी से उचित व्यवहार करना चाहिए और अच्छा, अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। ये हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। तेरहवीं बात है सेवा परोपकार। सेवा परोपकार मतलब जैसे लोगों की आप लोग किसी का भला करें, आपके जीवन में परोपकार सेवा का सद्गुण होना चाहिए। आप चाहे जिसको कहते हैं आप वॉलंटरी वर्क करके किसी का किसी को आप मदद कर सकते हैं, स्वार्थ रहित भलाई के काम प्रत्यन पूर्वक करने चाहिए, बिना उसमें कोई किसी की मदद करने के लिए बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई उसके बदले कोई आप सामान या कोई इच्छा ये सोचें कि बिना हमें ये करने से कुछ मिलेगा, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। बिना स्वार्थ के हमें किसी की मदद करनी चाहिए या कोई भी कार्य करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। तो इससे आपके आत्मसंतोष आत्मबल का विकास होगा। तो ये सेवा परोपकार ये एक हमें सब हमेशा अपने जीवन में ये अपना उतार लेना चाहिए। 14 बात पता लगाते हैं कि ये कौन सी 14वीं बात है, वो है तप। तप माने कि तपस्या, अपने जीवन में तपस्या लाइए। तपस्या माने कि आप कोई ये जरूरी नहीं कि तपस्या करने के लिए आपको कोई पहाड़ में कोई जंगल में अकेले जाकर वहाँ पर साधना करनी पड़ेगी, अकेले मेडिटेशन करना पड़ेगा या तपस्या कोई तपस्या आप इस जीवन में रहकर भी कर सकते हैं। तपस्या माने होता है कि आप कठिनाई सह कर भी भजन सेवा धर्म कर्म आदि में लगना चाहिए। जीवन में आप रोज अपना जो आपका जो आप जीवन जी रहे हैं रोज की आपकी आपकी रोज के जीवन में ये आप तप कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा कभी भजन गा लीजिए, किसी की सेवा में थोड़ा सा किसी की सेवा कर ली, जाकर धर्म का या कर्म वहाँ कुछ अच्छा कुछ काम कर लिया किसी कुछ धर्म के नाम पर, या किसी कोई बुजुर्ग हैं उनके लिए उनकी मदद कर दी, या आप कोई भी अच्छा कार्य करें वो भी एक तरह से तपस्या हुई वो जीवन को, उसको कहते हैं तप। चलिए आगे पता लगाते हैं 15वां बात कौन सी है, वो है सत्य का पक्ष लेना, माने कि हमेशा सच्चाई का साथ देना। कहीं भी कोई बात हो तो आप हमेशा सत्य माने कि सच्चाई न्याय का पक्ष लीजिए। अपने वाले की तरफ ज्यादा झुकाव और पराए वाले की प्रति क्रूरता करके आप अपनी आत्मशक्ति का गला मत घोटिए। ये ना सोचिए कि चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, पर अगर किसी ने गलत करा काम करा है तो आप उसका भी विरोध करिए। हमेशा सत्य का साथ दीजिए, भले ही वो आपका अपना ही इंसान आपका अपना ही कोई करीबी क्यों ना हो, पर अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उसका साथ नहीं दीजिए। आप हमेशा सच्चाई का साथ दें और हमेशा न्याय करें कि जो सही है। अपने वाले के प्रति न्याय और दूसरे के प्रति उदारता रखें। ये हमेशा याद रखिए कि जीवन में आपके जीवन में कितना भी कष्ट आए कितना भी बुरा वक्त आए, पर सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ें। सच्चाई का साथ देंगे तो हमेशा आपका जीवन पूर्ण रूप से बहुत सुखमय होगा। चलिए आखिरी बात वो है 16वां बात क्या है, वो है प्रेम व मधुर स्वभाव, यानी कि आप प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से अगर जो आपका स्वभाव है जो आपका बिहेवियर है वो बहुत मायने रखता है। आप किसी से कैसे बात करते हैं, मीठी बातें करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि ये सब करने से आप दूसरे का मन जीत लेंगे। और यही अगर आप किसी से बुरी तरह से पेश आए, बुरा व्यवहार करें, बुरी तरह से बात करें और गुस्से में, तो ये आपको ही कष्ट होगा, दूसरे वाले को नहीं होगा पर आप ही को कष्ट होगा। तो अगर जीवन अच्छा चाहते हैं तो सबसे प्रेम व मधुर स्वभाव से पेश आइए, दो शब्द अच्छे बात अच्छी तरह से बोलिए, अपना गुस्से में अपना कंट्रोल रखिए, संयम रखिए और अच्छे शब्द बोलिए, सोच समझ कर प्यार प्रेम से अपना अच्छा स्वभाव मधुर स्वभाव रखिएगा, तो ये आपके जीवन में आपका सबके साथ आपका देखिएगा कि आपका जीवन कितना सुखमय मंगलमय और आप व्यतीत कर सकते हैं। तो ये जो 16 बातें लौकिक उन्नति, अधिदैविक उन्नति और आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक उन्नति आदि सभी उन्नतियों की कुंजियां हैं, माने कि ये एक ऐसी ये बातें हैं जो ये 16 बातें अगर आप मान के चलें तो ये आपके जीवन में आपको एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी मदद करेंगी और आपका सबके साथ आपका जीवन हमेशा बहुत सुखमय रहेगा। तो संजय जी ये तो थी जो मैंने 16 बातें बताई, और ये नहीं कि खाली ये 16 बातें ही हैं जीवन में, देखिए ये तो मैंने बता दी पर ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में इसको कितना आप इसको फॉलो करते हैं, इसको अपने अंदर उतार लीजिए, क्योंकि तभी ये आपके जीवन में कोई बदलाव लाएगा। क्योंकि बोलने से तो चलिए मैंने भी बोल दिया और बोलना तो आसान है पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो सुनते हैं सीखते हैं अपने जीवन में उसको उतारें और अपना जीवन और अच्छा बनाएं। तो आशा करती हूँ सभी को ये बातें पसंद आई होंगी। संजय जी क्यों ना चले एक अच्छा एक गीत सुना जाए।
0: जरूर अनुराधा जी, हमारा तो काम ही ये है रेडियो बनाना और संदेश को रखना, सुनने वालों इसको सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं उसका हमें नहीं पता है, पर हमारा यही ज्योति का प्रकाश का यही लक्ष्य है कि हम अपना ओर से जो हमारे खोजी सेना है जो हमारे लिए खोज करके संदेश को रखते हैं और हम सब रेडियो पे और सुना देते हैं, तो हम जरूर एक गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
2: लाना दान वही है।

0: सुनने वालों, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मास्टर जी भारत से। और मास्टर जी, आपको हार्दिक से अभिनंदन करते हुए स्वागत किया जाता है। और आप इस समय ऑनलाइन हो चुके हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। और अपना कार्यक्रम लेके आते हैं कुछ नया सीखने को, तो आज सब लोगों ने अपना अपना सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सुन ही रहा था और अब जब मेरा नंबर आया तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपना सुना डाले, क्यों संजय जी?
0: एकदम राजेंद्र जी, एकदम।
1: तो आज जो विषय है वो है मांसाहारियों का सदाबहार तर्क के अनुसार, यानी जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो कुछ ना कुछ तर्क देते हैं अपना कि ऐसा नहीं ऐसा है, और जो वेजिटेरियन है वो कहते हैं ये गलत है। तो उसी के उपलक्ष्य में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के उपलक्ष्य में बातचीत है। तो बात करते हैं मांसाहारियों का एक सदाबहार। सदाबहार यानी कि हर समय तर्क में अक्सर सुनता हूँ, पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, तो उन्हें क्यों खाते हो? आइए आज इस तर्क की समीक्षा की जाए। तो मैं मांसाहारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक शाकाहारी पेड़ उखाड़ कर खा जाता है, पौधों को तोड़कर निगल जा लेता है? एक कुतर्की मांस भक्षी बायोलॉजी के बेसिक नियमों से भी अनभिज्ञ होता है, अथवा उसे पता होता है कि शाकाहारी तो फल फूल सब्जी अन्न जैसी चीजें खाते हैं जो पेड़ पौधों का हिस्सा होते हैं, स्वयं पेड़ पौधे नहीं। फल फूल तो वृक्ष उत्पन्न ही इसलिए करता है ताकि दूसरे जीव कीट पतंगे पक्षी फल फूल की तरफ आकर्षित हों, उनका सेवन करें। और चूंकि बीज स्वयं ऐसे रसायनों से कोटेड होता है, कोटेड यानी कवर, जिन्हें पशु पक्षी चबा नहीं पाते, इसलिए बीज उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सुरक्षित निकलकर भूमि का हिस्सा बनकर पेड़ पौधों की उत्पत्ति करता है, जिसे ये हिंसा बताते हैं। वास्तव में यह प्रकृति द्वारा वनस्पति को प्रदत्त प्रजनन विधि है। इसके अलावा शाकाहारी पौधों के उन हिस्सों को भी ग्रहण करता है जिन्हें पौधे फोटोस्थिसिस की मदद से भोजन के रूप में स्टोर रखते हैं। इस प्रक्रिया में भी किसी पेड़ पौधों की जान नहीं चली जाती और न ही पेड़ पौधे का दर्द होता है। यह भी विज्ञान प्रमाणित है कि पेड़ पौधों में दर्द महसूस कराने वाले न्यूरो रिसेप्टर्स नहीं होते। उसके अलावा हमारे द्वारा ग्रहण किए गए हिस्से को पेड़ पौधे उगाने की भी क्षमता रखते हैं, यानी अगर हमने कोई चीज़ पेड़ पौधा में से पत्ता तोड़ा खाया तो वो दोबारा से उग जाता है, मरता नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में एक दूसरे को भोजन हड़पने की थोड़ी बहुत अनैतिकता आप इसमें ढूंढ सकते हैं, जिसकी मुक्ति कृतज्ञ भाव से भोजन ग्रहण करके पौधों को धन्यवाद ज्ञापित करके भी हासिल हो सकती है। पर एक तरफ जहां यह अनैतिकता है तो वहीं दूसरी ओर तो साफ तौर पे क्रूरता की प्रकाष्ठा है, एक जीवेषणा का अंतरहीन शोषण है, भय का आर्तनाद है। अपने प्राणों को जाते देख एक जीव भी चीख पुकार एक मांस भक्षी भला किस युक्ति से उन निरीह निरपराध जीवों की बद्दुआओं से मुक्त हो सकेगा? अगर एक मांस भक्षी वाकई पेड़ को कटने से व्यथित होता है तो मैं बताता हूँ कि पेड़ काटे क्यों जाते हैं। पेड़ काटे जाते हैं आपके घरों में साजो सामान के लिए, लकड़ी के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। जंगल का 70% हिस्सा काटा जाता है कृषि योग्य भूमि हासिल करने के लिए, ताकि मांस भक्षियों की खुराक बनने वाले जीवों का चारा पानी उगाया जा सके। विडम्बना देखिए, पेड़ों के हितैषी मांसाहार को पता ही नहीं होता कि पेड़ों की सबसे ज़्यादा क्षति का जिम्मेवार वह स्वयं ही होता है, कोई शाकाहारी नहीं। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि खाए गए भोजन का 10% हिस्सा ही बॉडी में फैट में तब्दील होता है। अर्थात सामान्य गणित से भी चले तो मांस पक्षियों की खुराक तैयार करने में लगे शाकाहार के

0: 100 लोगों का पेट भरा जा सकता है, अर्थात एक अकेला मांसाहारी 10 लोगों का भोजन तो हड़पता ही है। जंगलों को नष्ट करता है और एनिमल फार्मिंग के रूप में वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग का भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। पर एक मांसाहारी को तर्क सांख्यिकी अथवा पर्यावरण से क्या लेना देना, उसकी बुद्धि तो जिभ्यात स्वादन यानी जीभ के स्वाद के लिए तर्क हेतु कुतर्क की उत्पत्ति में ही मगन रहती है। बहरहाल हिंसा और अहिंसा के भेद भी भेद सूक्ष्म हैं। मैं अगर पूर्णतः अहिंसक होने का व्रत धारण करके वायुपान पर ही जीवित रहने का प्रण ले लूं तो क्या यह अहिंसा होगी? ना, यह सरासर हिंसा होगी मेरे खुद के प्रति, मेरे परिवार के प्रति। मैं यह तो कहता हूं कि नहीं, कि विश्व फल से कल से शाकाहारी हो जाए और पूर्णतः कूरता से मुक्त हो जाए, पर हिंसा को त्यागने का विकल्प न हो तो न्यूनतम हिंसा ही मनुष्य के लिए वर्णीय होनी चाहिए। अहिंसक न बनो तो कम से कम न्यूनतम हिंसक ही बन जाओ। पूरे इंसान न बनो तो कम से कम आधा अधूरा इंसान ही बन जाओ। इस प्रकार से जो शाकाहारी और मांसाहारी का वृतांत सुना सब लोगों ने, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के लोगों ने, तो उनको पता चल गया होगा कि आज किस प्रकार से लोग मांसाहारी लोग तर्क देते हैं कि तुम लोग भी तो साग सब्जी खाते, उसमें भी तो प्राण होते उगता है, और जो लोग खाते हैं वो अपना तर्क देते हैं। तो क्यों ना संजय जी, लोगों को तो ये मैसेज पहुंच गया होगा, 128 देशों में पहुंच गया होगा मैसेज कि शाकाहार क्या है और मांसाहार क्या है।
1: जरूर राजेंद्र जी, क्या आहार करना चाहिए। जरूर एक इस बात को सुनकर हमारे सभी सुनने वालों जरूर इस पे गौर करें, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर्गत जो इतना सुंदर संदेश आपने रखे, एक ये संदेश जो दुनिया के हर एक प्रांत में जहां इंटरनेट होते हैं वहां तक हमारे आवाज़ को जो पहुंचते हैं, और ज़रूर इस पे गौर करेंगे हम। क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी,
0: एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं जो शांता जी का पिटारा से निकलता है।

लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही ये गाना चलता है तो प्रोग्राम हमारा 2 घंटा यानी बीत चुका होता है, और इस गाने को चलते ही हमें लगता है कि अब 1 हफ्ता हम विश्राम चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो हमारी बातें इतनी अपना समय निकाल के इतने प्यार से सुनते हैं और अपना रिस्पांस मैसेज भी भेजते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। तो क्यों ना उन लोगों के लिए एक तब तक के लिए नमस्कार किया जाए अगली बार मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार।

ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

न ख्वाब पूरे हुए न मोहब्बत मिली, न ख्वाब पूरे हुए न मोहब्बत मिली, घर के मसलों से मुझे फुर्सत न मिली। हालात के आगे मैं कितना मजबूर हो गया, कुछ पाने की चाहत में खुद से कितना दूर हो गया। और इसी शेर के साथ इस हफ्ते के लिए आप सभी सुनने वालों को मनीषा की तरफ से सादर नमस्कार, शुभ रात्रि।

सभी सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी ज्योति के प्रकाश सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

0: एक छोटा सा जोक से यहाँ से हम आपसे इजाज़त लेती हूँ, और वो ये है कि ज़िंदगी आपको दुख देंगी, ज़िंदगी आपको दुख देंगे, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना, मुझे नहीं चाहिए।
1: जाए जिया तेरी कसम।
0: और इसी बात के साथ सुनने वालों, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े थे ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में, और स्वीकार कीजिए यहाँ से शिविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए बबली आसरा जी, शांता खेमई जी, अनुराधा जी, मनीषा जी, राजेंद्र सिंह जी, यूसुफ जी और मैं हूं आपका सेवक संजय। बस यही आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। और ये कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, पर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था, जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न तो कि उनके पिताजी ने कैसे